0: श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही आज का हमारा प्रभाती वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, ऊंची नीची तथा ढालू भूमि को सीढ़ीदार खेत के रूप में बनाकर सफलतापूर्वक खेती किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बनाते समय भूमि का ढाल, मिट्टी की किस्म, वार्षिक वर्षा आदि पर ध्यान देना जरूरी होता है। सीढ़ीदार खेती इस बात पर निर्भर करती है कि पानी की निकास की उचित व्यवस्था है या नहीं। जिस मिट्टी पर खेती की जाती है वो एक पतली सतह होती है जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इस मिट्टी की गहराई कई इंच से कई फीट तक होती है, लेकिन ऊपरी सतह 6 इंच से 9 इंच तक ही होती है। इसी मिट्टी में कृषि कार्य होता है और यही उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रकृति को इस मिट्टी को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में मिट्टी कटाव से ये सारे बह जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे ढालू या ऊंची नीची भूमि को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि एक बार जो मिट्टी कटकर पानी या हवा के साथ बह जाती है उसे ठीक करना कठिन होता है। पहाड़ी भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना काफी लाभप्रद है। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से हम भूमि का सही उपयोग कर पाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के क्षेत्रों में अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। हमारे द्वीप समूह में वर्षा ज्यादा होती है, अतः यहाँ पर खेत इसी के अनुरूप बनाए जाएं। सीढ़ीनुमा खेत 8 डिग्री से अधिक के ढाल पर बनाए जाते हैं। खेत बनाने से पहले मिट्टी की गहराई की जांच कर लेनी चाहिए। जब मिट्टी गहरी हो तभी खेत बनाए जाने चाहिए। खेतों की चौड़ाई व एक खेत से दूसरे खेत की ऊंचाई पहाड़ी जमीन के ढाल पर निर्भर करती है। अधिक बारिश के क्षेत्रों में खेतों का ढाल अंदर की ओर किया जाता है, जिससे कि बारिश के अधिक पानी को सफलतापूर्वक खेतों से बाहर निकाला जा सके। यदि खेतों का ढाल बाहर की ओर होगा तो पानी एक खेत से होता हुआ दूसरे खेत में चला जाएगा। इस प्रकार निचले खेतों में पानी की काफी मात्रा आ जाएगी। किसान भाइयों, ये न केवल ऊपर की उपजाऊ मिट्टी काटेगी बल्कि दो खेतों के बीच की ऊंचाई को भी काट देगी। अंदर की ओर ढाल देने से हर खेत का पानी अलग अलग निकाला जा सकेगा। इस प्रकार मिट्टी के कटाव की कम से कम आशंका रहेगी। खेतों में अंदर की ही ओर एक और नाली बना दी जाती है, जिससे कि बहता हुआ पानी सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। इन सभी खेतों के अंत में एक ऐसी नाली ऊपर से नीचे बनाई जाती है जो सभी खेतों के पानी को एक साथ नाले में ले जा सके। इस नाली को या तो पक्का बनाना चाहिए या फिर बीच बीच में जंगली बल्लियों से लकड़ी का छोटा सा बांध सा बना दें, जिससे पानी बिना भूमि को काटे बह सके। जैसे जैसे ढाल बढ़ेगा वैसे वैसे खेत की चौड़ाई कम होती जाएगी। यदि खेतों की चौड़ाई बढ़ाएं तो एक खेत से दूसरे खेत की ऊंचाई बढ़ जाएगी और फिर इसके गिरने का डर बढ़ जाएगा। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से पानी को सही प्रकार से कम गति के साथ खेतों से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार खेतों की उपजाऊ भूमि बच जाती है। साथ ही सीढ़ीनुमा खेत बनाने से प्रत्येक खेत की जुताई, गुड़ाई आदि अच्छी तरीके से

0: हो सकती है। इस प्रकार से खेतों में फसल की दी गई खाद एवं उर्वरक की मात्रा भी बहकर नष्ट नहीं होती है। दो खेतों के बीच जो ढालू जमीन होती है उस पर घास आदि उगाई जा सकती है। घास वहां पर भूमि को काटने से रोके रहेगी और वहीं पर हमें पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराती रहेगी। इस प्रकार किसान भाइयों, पहाड़ी भूमि में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं।
1: अभी आपने सुना एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार

0: बार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG, re-examination will be conducted this afternoon. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held from 2 p.m. to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all system jammers, CCTV, frisking staff, and

0: biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair, transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, Mr. Sonowal said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defence systems. Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, will inaugurate and dedicate several key railway infrastructure projects aimed at enhancing passenger amenities and strengthening the rail network in Rajasthan today. He will flag off the Lalgarh-Sabarmati Express from Bikaner Railway Station. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undaf scored twice. Earlier, Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, सवेरे 6:15 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। 6:25 पर होगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:30 पर सुनिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में कोलकाता के रेड रोड से सामूहिक योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह और गुलाम अली। सवेरे 9:00 बच्चों के कार्यक्रम बाल जगत में के सुमा से वार्ताप सुनेंगे योग और स्वास्थ्य बच्चों का विज्ञान। शास्त्र संगीत कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन, पंडित भीमसेन जोशी का गायन और पंडित विश्वमोहन भट्ट का मिहन मोहन वीणा वादन प्रसारित किया जाएगा सवेरे 9:30 पर। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश सवेरे 10:00। दिन के 11:00 सुनिए कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे चंदन दास। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी स्थानीय सभा समाप्त होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसके तहत 2:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। दोपहर बाद 3:00 होगा एल्बम टाइम्स और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो 3:30 पर। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसके तहत सूचनाओं के अलावा सेंट मैरी मैगडलिन चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर प्रसारित की जाएगी प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम शाम 5:00 5:30 पर। बांग्ला कार्यक्रम श्रोताओं शाम 6:00 सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संगीत संगनी। शाम 6:30 पर धरती की गीत कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत सुनवाई जाएंगे। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं बताया जाएगा 7:15 पर। श्रोताओं, 7:20 पर फिल्म

0: गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। तत्पश्चात सुनिए चर्चा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। श्रोताओं 8:00 सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 6:15 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस ब्रेक के बाद
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
2: नमस्कार, भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026

मुख्य समाचार। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोलकाता से योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। प्रगति पथ यात्रा के हिस्से के रूप में कल केंद्रीय मंत्री ने पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत द्वीपों के पात्र किसानों को 2.5992 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। और दक्षिण अंडमान में मौजूदा जल स्थिति की समीक्षा के लिए सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। द्वीप समूह में भी प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी विशिष्ट अतिथि जबकि सांसद बिष्णुपद रे विशेष अतिथि होंगे। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम का एक रूप नहीं है बल्कि यह एक समग्र अनुशासन है जो शरीर मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है जिससे व्यक्ति स्वस्थ अधिक सक्रिय और संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम होता है। इस वर्ष का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। जीवन के सभी चरणों में शारीरिक जीवन शक्ति मानसिक कल्याण भावनात्मक संतुलन और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां जीवन शैली से जुड़े विकार और तनाव बेहद आम हो गए हैं योग बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य और स्वतंत्रता बनाए रखने का एक सरल लेकिन प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वस्थ वृद्धावस्था व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव के प्रति एक नए संकल्प के साथ मनाने की अपील की। सांसद बिष्णुपद रे ने भी इस दिवस पर अपने संदेश में कहा कि योग मानवता को

भारत का एक अनमोल उपहार है। उन्होंने कहा कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में योग का अभ्यास हमें अधिक स्वस्थ, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्रगति पथ यात्रा के हिस्से के रूप में कल केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करने के लिए द्वीपों के कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया। उन्होंने स्वराज द्वीप पर सी पोर्ट टर्मिनल के चल रहे निर्माण स्थल का दौरा कर बुनियादी ढांचा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने गांधी पार्क और फ्लैग पॉइंट का दौरा कर क्षेत्र में किए गए सुधारों और विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। यह पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। परीक्षा से पहले राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया ताकि सिस्टम जैमर, सीसीटीवी, तलाशी लेने वाले कर्मचारियों और बायोमेट्रिक से संबंधित सभी प्रणालियों की जांच की जा सके। एजेंसी ने बताया कि वह परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पीएम किसान सम्मान निधि योजना और जलापूर्ति समीक्षा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। द्वीप समूह में भी कृषि विभाग की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा इस 23वीं किस्त को जारी किए जाने के सीधे प्रसारण के लिए कल सभी ब्लॉकों और विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित की गई, जिससे 1,230 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान इन द्वीपों के पात्र किसानों को 2.5992 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पीएम किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक द्वीप समूह के किसानों को कुल 64.48 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कृषि विज्ञान केंद्रों और क्यारी क्षेत्र स्टेशन मिनीकॉय के साथ कल पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को टिकाऊ कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई, जिनमें संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वर्मी कम्पोस्टिंग, जैव उर्वरकों से बीज उपचार, वैज्ञानिक धान की खेती के तरीके, एकीकृत कीट प्रबंधन और जैविक व प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाना शामिल था। कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के उद्देश्यों और लाभों को रेखांकित किया गया, साथ ही खेत बचाओ अभियान के मुख्य संदेशों को बढ़ावा दिया गया। दक्षिण अंडमान में मौजूदा जल स्थिति की समीक्षा के लिए हाल ही में सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष, पार्षद और पंचायती राज संस्थान के सदस्य शामिल हुए। बैठक में धनिकाड़ी बांध में पानी की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान जलापूर्ति इसी तरह जारी रहेगी। जलाशय का जलस्तर 62 मीटर तक पहुंचने के बाद ही आपूर्ति बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। बैठक के दौरान जल संकट वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुधारने, जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने और जल आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की आवश्यक मरम्मत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी में कल वार्ड नंबर 6 के लगभग 150 युवा और महिलाएं शामिल हुए। नए सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भाजपा की विकास नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया। यह सदस्यता कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर द्वीप समूह के प्रभारी रघुनाथ

कुलकर्णी भी उपस्थित थे। पार्टी अध्यक्ष ने नए सदस्यों से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देने का आह्वान किया। क्षेत्रीय प्रभारी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परिवर्तनकारी विकास पहलों पर प्रकाश डाला। शिक्षा निदेशालय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में उम्मीदवार अपने दावे और आपत्तियां विभाग की वेबसाइट पर 26 जून

इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में उम्मीदवार अपने दावे और आपत्तियां विभाग की वेबसाइट पर 26 जून मध्य रात्रि तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोलकाता से योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। प्रगति पथ यात्रा के हिस्से के रूप में कल केंद्रीय मंत्री ने पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत द्वीपों के पात्र किसानों को 2.5992 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। और दक्षिण अंडमान में मौजूदा जल स्थिति की समीक्षा के लिए सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से छुटेगा और रात्रि 8 लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल सोमवार 22 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को सुबह 6 श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 12 रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड और कदम लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान मंगलवार 23 तारीख को सवेरे 7 रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 22 तारीख को शाम 5 श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान अगले दिन 23 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: व्यक्त विशेषज्ञ हैं, परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is

0: chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है.
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष.
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है. इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ. मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया. अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय

0: আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। ১৯২০ সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ ১৯২৩ সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বলাব না, ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে ২০২৬ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১২তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
1: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Shri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय

को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट

be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी

0: खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का

0: मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: जी, और इस समय यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं, सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक, वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है, उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं, उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं।

0: साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं, हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: गुरुजी मनीष सिन्हा जी, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस आसना।
2: यस, एक्चुअली आसन को हम इस तरह से समझें कि सीट ऑफ अवेयरनेस, हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है, इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से,
0: जी
2: ये जागृत होती है और उसकी आसन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुँच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है। और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी, कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं, योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में?
2: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस
0: जी
2: जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना,
0: जी
2: जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी
0: जी
2: चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर
0: जी
2: उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं।
0: जी
2: इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
3: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
0: जी
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत

0: बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना। योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
1: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी
1: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं। जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे।
0: जी
1: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू
0: जी
1: टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है।
0: जी
1: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
0: जी
1: यस
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे
0: जी
2: हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
0: जी
3: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s परमहंस योगानंद सेट अप द योगा सेंटर इन Kolkata and also at other places. And today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है।

0: क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
0: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और
2: निरीक्षण
0: प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he's interacting with them, and he's just pepping them up. This shows
0: जी
2: that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं, निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो
0: जी
1: एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है,
0: जी
1: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है।
0: जी, और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए। बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: Yes, absolutely. And as we mentioned earlier, also the Honorable Prime Minister taking keen interest, especially among the teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और
2: And
0: अब
2: now about
0: यहाँ
2: this asana,
0: अभ्यास किया
2: Neelam.
0: जा रहा है शशकासन का।

0: खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा। सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी

0: का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो
1: जी
0: ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है। साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड
1: जी
0: नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
1: जी और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
1: जी
2: So
1: बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज़ है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये
1: जी
0: मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है,
1: जी
0: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर
0: हाँ
1: वाला हिस्सा जो है, वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक
0: बिल्कुल
1: होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में
0: आसन
1: बहुत करवाया गया ये आसन।
0: साइड
1: और
0: इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है।
1: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम
1: जी,
2: टू डू द
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर
2: आसनास इन
1: रहे हैं।
2: द परफेक्ट मैनर एंड नाउ प्रतिमा जी अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है।
1: जी
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
1: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है, बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके अलावा डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है।

0: साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है।
1: जी
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही, जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही
1: जी
2: दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता
1: जी
2: हूँ मैं। बहुत ही सुंदर,
1: जी
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम
2: सुंदर।
1: अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और
2: यस
1: सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना, सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम,
1: जी
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है।
1: जी
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्धहल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है। और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्धहल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पॉस्चर है ये,
1: जी
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु
1: जी
0: विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
1: जी
0: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है।

0: मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
1: जी
2: कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना।
1: जी
2: योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इन्हेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और
1: जी।
0: योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव।

0: जी
1: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है, ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
0: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से
1: व्यवस्थित कर
0: देता
1: है।
0: जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद, क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है, डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इन का सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
1: बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं।
2: एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
0: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड

0: अपॉर्चुनिटी इस पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीज़ें मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप हैं, वही शिव हैं, वही अनंत हैं, वही चैतन्य हैं।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना, शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे इसकी धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाए बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़े।
3: Yoga 365, that is what the Honorable Prime Minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced

0: embraced yoga as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
1: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाए, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
2: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सब कॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
0: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशन्ड एंड एज यू आल्सो

0: Mentioned Neelamji that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time, also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard, and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly. And on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans, also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel, and others also performed yogasanas there. And also our Border Security Force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं. इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज़्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा, और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक

0: गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मुरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: अभी आप दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजे हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मोज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
5: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
5: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
4: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित

0: आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।

0: और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हार्मूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01-1229-01-701 पर।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत कार्यक्रम में गुलाम अली को सुन रहे हैं। जगजीत सिंह को सुन रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
5: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
2: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
5: ये कौन सा टीका है दीदी?
2: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
5: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर कर लो।
5: धन्यवाद दीदी।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट स्टेशन और मैं हूँ आपके साथ आपकी रीता दीदी, आपकी होस्ट। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करें और हमेशा निरोग रहें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर के सबसे छोटे साइंटिस्ट के बारे में। पहचानो कौन? अरे बाबा, हमारे बच्चे है ना, वो हर छोटी चीज में सवाल पूछते हैं, है ना। मम्मी, आसमान नीला क्यों है? पापा, पेट में चूहे कैसे कूदते हैं? यानी उनका दिमाग पैदा होते ही साइंस मोड पर ऑन रहता है ना। इन सारी अच्छी आदतों को सीखने में सही मदद करता है योग। साथ ही नन्हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग और स्वास्थ्य बच्चों का विज्ञान पर। अब आप सोच रहे होंगे कि योग तो बाबा दादा करते हैं, इनमें बच्चों का क्या विज्ञान? वो बॉस, सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के शरीर की। दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने पैर का अंगूठा भी मुंह में डाल दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बेहद लचीला होता है। विज्ञान कहता है दोस्तों कि बच्चों के शरीर में बड़ों से ज्यादा हड्डियां होती हैं, जो धीरे धीरे आपस में जुड़ जाती है। दोस्तों, इन बातों के साथ आपकी करवाएंगे हम मुलाकात आपके दोस्तों से और जानेंगे उनके विचार योग दिवस पर। जब बच्चे ताड़ासन या भुजंगासन करते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी पर एक सही पकड़ बनती है। साइंस की भाषा में कहें तो इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यानी अगर बच्चों को लंबा और मजबूत बनाना है तो वीडियो गेम छुड़वाओ और योग मैट पर ले जाओ। तो दोस्तों, चलते हैं आपकी प्यारी सुमा दीदी के पास इस गीत के बाद।

में। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ केसुमा, एक टीचर और एक योगा प्रैक्टिशनर। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आप जानते हो स्वस्थ और खुशहाल जीवन का एक सरल उपाय हमारे पास है, वह है योग और योगा। जब भी हम योग के बारे में बात करते हैं, तब हमारे सामने शरीर को मोड़ने और तोड़ने जैसी कोई तस्वीर उभरती है। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं, योग का मतलब केवल आसन नहीं होता, ये केवल शारीरिक व्यायाम भी नहीं, बल्कि योग एक यूनियन है, एक जोड़ है। ये जोड़ती है आत्मा को परमात्मा से, व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसके अलावे योगा कर्मसु कौशलम, कार्य कुशलता से करना योग है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात विचारों, भावनाओं और चंचलता को नियंत्रित करना या शांत करना योग है। बच्चों, क्या आपने महर्षि पतंजलि जी का नाम सुना है? महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। उन्होंने योग के ज्ञान को व्यवस्थित किया और योग सूत्र नामक एक महान ग्रंथ की रचना की थी। योग की एक और परिभाषा भी है, समत्वम योग उच्चते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में भी समान और संतुलित भाव में रहना भी योग है। योग की ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। वैसे योग के बहुत सारे गुरु भी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में योग को फैलाया। योग की कई शाखाएं भी है, योग की कई शैलियां भी है। इन सभी शैलियों का अपना विशेष लक्ष्य एवं अभ्यास का तरीका भी है। जैसे हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और भी कई सारी शैलियां। क्योंकि पूरे विश्व में योग का अभ्यास किया जाता है, तो तरीके शैलियां भी अलग होगी। बच्चों, क्या आपने कभी अष्टांग योग के बारे में सुना है? अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग का एक व्यवस्थित मार्ग है। इसे 8 अंगों वाला योग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत शामिल है व्यक्ति का बाहरी अनुशासन और आंतरिक विकास, जिसमें शामिल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग के माध्यम से योग साधक चित्त की वृत्तियों का निरोध करके मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात जीवन में सफलता पाता है। ओके, योग आसनों की संख्या की बात करें तो एक प्राचीन योग ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, जिसमें मुख्यतः 84 तरह के आसनों का जिक्र है। कुछ अन्य ग्रंथों में 84 लाख आसनों का भी वर्णन मिलता है। बच्चों, प्रकृति हमें हर रूप में कुछ न कुछ सिखाती है। बहुत से योगासन जानवरों से प्रेरित है, या यूं कहिए कि जानवरों के शारीरिक मुद्रा से नकल करके बनाए गए हैं। जैसे भुजंगासन कोबरा से, माजरासन बिल्ली से, शशांकासन खरगोश से, मत्स्यासन मछली से और भी कई मिल जाएंगे। कुछ आसनों के नाम तो वृक्षों से जुड़े हैं, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन आदि। जो हिंदी में कहावत प्रचलित है, शरीर से प्रेम हो तो आसन करे, सांसों से प्रेम हो तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम हो तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम हो तो समर्पण करे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में कोई थकावट ना हो, बीमारी ना हो। इसके लिए हमें योगा का नियमित अभ्यास करना चाहिए। अब हम देखेंगे योग कैसे स्वस्थ बच्चों का विज्ञान है। बच्चों के लिए तो योग विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि ये आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं। वो कैसे? आप सोच रहे होंगे ना, वो कैसे? मैं विस्तार से बताती हूँ। आज का स्वस्थ बच्चा कल का स्वस्थ और सशक्त नागरिक बनता है, और योग इस ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है? योग शरीर को लचीला बनाता है। जैसे ताड़ासन, वृक्षासन और भुजंगासन जैसे योगासन शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत

तथा लचीला बनाता है। योग संतुलन और समन्वय बढ़ाता है। ताड़ासन, पर्वतासन, वृक्षासन, गरुड़ासन आदि शरीर को बैलेंस में, संतुलन में लाता है। ठीक है बच्चों, कुछ क्रियाएं एवं आसन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाती है, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। इसके लिए प्राणायाम सही विकल्प रहेगा। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ता है और शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। योग तनाव और चिंता कम करती है, बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाती है, पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाती है, मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। अगर आप अपने ब्रेन हेल्थ को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ काम और भी करने पड़ेंगे, जैसे ईट हेल्दी फूड, अच्छे भोजन खाएं। आप चाहो तो रात को बादाम अखरोट पानी में सोखने के लिए रख सकते हैं और सुबह अखरोट और बादाम को आप खा लीजिए। ओके, देन आपको पत्तेदार सब्जियां खानी होगी, नट्स एंड सीड्स खानी होगी। ऐसे अगर आप हेल्दी फूड लेंगे तो आपके ब्रेन को विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होंगे और आपका दिमाग अच्छा काम करने लगेगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ आपको कुछ क्रियाएं भी करनी होगी। ठीक है, मैं कुछ क्रियाएं बताती हूँ, जैसे ब्राह्मरी प्राणायाम हुआ, सर्वांगासन हुआ, पद्मासन, अनुलोम विलोम, वृक्षासन, ऐसे कुछ आसन है जिसको आपको करना होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, योगासन किसी गुरु के या ट्रेनर के सानिध्य में पूछ कर ही करे। ओके, अब हम बात करते हैं भावनात्मक संतुलन की। योग बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। योग बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन बढ़ाने में भी सहायक है। बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन होती है ना, क्रोध की जो भावना बनती है, उसे योग से कम किया जा सकता है। बच्चों के मन को शांत करने वाले योगासन में हम बलासन कर सकते हैं, या फिर वृक्षासन कर सकते हैं, मार्जरी आसन कर सकते हैं, हैप्पी बेबी पोज आसन है वो भी कर सकते हैं, या फिर आप शवासन भी कर सकते हैं। तो ऐसे करने से, इन आसनों का प्रयोग करने से अंदर जो क्रोध की भावना उठती है ना, उसको आप शांत कर सकते हैं। कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स भी है, जैसे लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना, लंबी सांस लेना और छोड़ देना। ऐसे करने से मन के अंदर जो घबराहट उत्पन्न होती है ना, उसे भी कम किया जा सकता है। पर एक बात है, बच्चों को जबरदस्ती योग न कराया जाए, उन्हें खेल खेल में या फिर कोई कहानी के माध्यम से योगाभ्यास कराया जाए, तभी बच्चा खुशी खुशी योगाभ्यास में भाग लेता है ना बच्चों। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित योग और प्राणायाम करने से मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बेहतर है, और शरीर के तंत्रिका तंत्र और हॉर्मोन्स में संतुलन को सुधारने का काम भी योग से होगा, या फिर योगा से ही होगा। ठीक है बच्चों, स्वस्थ बच्चा उज्जवल भविष्य। यदि आप बच्चे रोज 10 से 15 मिनट योगा करें, तो आप शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से एकाग्र और भावनात्मक रूप से संतुलित बन सकते हैं। अगर बच्चों आपके पास योगासन के लिए समय नहीं हो, तो आप केवल सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास 10 मिनट है योगा करने के लिए, अगर आपके पास 10 मिनट बचता है योगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस 10 मिनट में 2 मिनट प्राणायाम कीजिए, जिसमें आप गहरे लंबे सांस लीजिए और छोड़िए। फिर 2 मिनट में आप बटरफ्लाई पोज और बद्रासन कीजिए, और अगले 2 मिनट में ताड़ासन कीजिए, और आपका अगला 2 मिनट बलासन या शशांगासन को दीजिए, और जो 2 मिनट बच रहा है ना, उसमें आप शवासन कीजिए, पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सपनों की दुनिया में खो जाइए। कोई काल्पनिक यात्रा करे, ऐसे सोचिए जैसे कि आप किसी सुंदर बगीचे में घूम रहे हो या समुद्र तट पर घूम रहे हो, ऐसी आप कल्पना कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहे। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। आप सदैव आगे बढ़े, अपने माता पिता, शिक्षकों और देश का नाम रोशन करें, यही मेरा आशीर्वाद है।

नन्हे दोस्तों, आप सभी ने आपकी प्यारी सुमा दीदी की जुबानी सुनी योग और स्वास्थ्य बच्चों का विज्ञान। दोस्तों, उन्होंने हमारे नन्हे दोस्तों को योग के महत्व के साथ साथ उनकी उत्पत्ति और हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व को बड़े ही विस्तार रूप से

समझाया है ना। तो हम चलते हैं आगे और अब आते हैं उन चीजों पर जिनसे हर मम्मी पापा परेशान है। हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, वो बहुत चंचल है। अरे भाई, वो बच्चा है कंप्यूटर नहीं, लेकिन उनके दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने का विज्ञान योग के पास जरूर है। जब बच्ची अनुलोम विलोम या भ्रमरी प्राणायाम करते हैं तो जानते हैं क्या होता है? साइंस कहता है कि इनसे उनके दिमाग के दोनों हिस्से यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच तालमेल बेहतर होता है। ऑक्सीजन धीरे धीरे ब्रेन सेल्स तक पहुंचती है। रिजल्ट, फोकस एकदम अर्जुन की तीर जैसा और मेमोरी ऐसे कि एग्जाम में सब याद रहे। इसे कहते हैं बिना बादाम खाए दिमाग तेज करने का वैज्ञानिक तरीका। तो दोस्तों, हर चीज याद करने का तरीका सिखा जाती है योग। हमने किया था वादा मिलवाएंगे दोस्तों से, तो चलते हैं दोस्तों के पास और जानते हैं उनके प्यारे संदेश इस प्यारे से गीत के बाद।

0: गीतों के बाद चलते हैं आपके दोस्त अंशिका के पास और जानते हैं योग की प्राचीनतम बातों को वो अपने दोस्तों से कैसे करती है साझा।
1: पैसे के पीछे दौड़ रहा मन, पैसे के पीछे दौड़ रहा मन, रोगों से पीड़ित सबका तन, योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन। जी हाँ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन। आप सभी नन्हे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंशिका खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 8वीं की छात्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भारतीय प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि योग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। भारत को योग का जन्मदाता माना जाता है और

0: पतंजलि को योग का जनक। योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाता है। इस दिवस को मनाने का श्रेय माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उनके निरंतर प्रयास से ही पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजपथ दिल्ली में मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में बताना है और योग के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कहा भी गया है कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। जी हाँ, जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। धन्यवाद।
1: दोस्तों, हमारी दोस्त अंशिका ने योग की प्रारंभिक अवस्था के बारे में हम सभी को अवगत करवाया। दोस्तों, आजकल के बच्चे बात बात पर गुस्सा होते हैं, है ना, चिढ़ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन देख देख कर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाया करता है। तो दोस्तों, विज्ञान कहता है शशांक आसन करते हैं तो उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं और एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यानी योग करने से बच्चा दिन भर खुश रहेगा और जब बच्चा खुश रहेगा तो घर में शांति रहेगी और मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ मैं आपको ले चलती हूँ आपके नन्हे दोस्त करुण के पास और वे क्या कहते हैं, उनके विचारों को हम जानते हैं हैप्पी वाले अंदाज के साथ।
2: नमस्ते, मैं हूँ एम करुण कुमार। मैं विवेकानंद केंद्र विद्यालय श्री विजयपुरम में पढ़ता हूँ। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी स्कूल का होमवर्क, एग्जाम का स्ट्रेस और फिर शाम को खेलकूद, तो कभी कभी लगता है ना कि लाइफ कितनी भागदौड़ भरी हो गई है। इन सब में मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनता है प्राणायाम। जब मैं सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके लंबी सांसें लेता हूँ तो मेरा दिमाग एकदम शांत और फोकस भरा हो जाता है। आज 21 जून योग दिवस पर मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप छोटे हो या बड़े, बस एक ही वादा है करना, अपने लिए सिर्फ 20 मिनट निकालिए, योग को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हैप्पी माइंड रहता है। धन्यवाद।
1: योग को अपनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, करुण ने हमारे दोस्तों को बड़े ही प्यारे अंदाज में समझाया। दोस्तों, योग कोई जादू या सिर्फ संतों की चीज नहीं है, यह हमारे शरीर और मन को फिट रखने का सबसे सटीक और प्राचीन विज्ञान है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपको हम दूसरे नन्ही मेहमान से मिलवाते हैं, त्रिशा, जो हमारे दोस्तों को बताएंगी कि खेल के अनुभव के साथ

0: देखने का सबसे सटीक और प्राचीन विज्ञान है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपको हम दूसरी नन्ही मेहमान से मिलवाते हैं, त्रिशा, जो हमारे दोस्तों को बताएंगी कि खेल के अनुभव के साथ योग को कैसे उन्होंने अपने लाइफ में अपनाया और योग के साथ अपनी प्रतिभाओं को कैसे उन्होंने निखारा।
1: नमस्कार, मैं त्रिशा बालन कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं आकाशवाणी श्री विजयापुरम की आभारी हूँ। हम सभी जानते हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन मेरे लिए योग सिर्फ एक दिन मनाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बना सकती है। मैं आर्चरी खेलती हूँ और मुझे पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। इसके अलावा पढ़ाई और दूसरी गतिविधियाँ भी मेरे दिनचर्या का हिस्सा है। इतने सारे कामों के बीच कभी कभी मन भटक ही जाता है या तनाव महसूस होने लगता है। ऐसे समय में योग मेरी बहुत मदद आती है। आर्चरी में सबसे बड़ी ज़रूरत एकाग्रता और धैर्य की है। जब हम लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। योग और प्राणायाम करने से मेरी एकाग्रता बेहतर हुई है और मैं खुद को पहले से ज़्यादा शांत और केंद्रित महसूस करती हूँ। इसका फ़ायदा मुझे खेल के साथ साथ पढ़ाई और पेंटिंग में भी मिलता है। योग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी विशेष उपकरण या बड़े मैदान की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मिनट का समय और नियमित अभ्यास चाहिए। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे मन को शांत भी करता है। आज के समय में जब हम सभी मोबाइल, सोशल मीडिया और पढ़ाई के दबाव के बीच में रहते हैं, योग हमें थोड़ा रुक कर खुद पर ध्यान देना सिखाता है। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए योग बहुत उपयोगी है। यह न केवल हमारी एकाग्रता बढ़ाता है, बल्कि हमें सकारात्मक सोचने और तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें यही याद दिलाता है कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। अगर हम रोज़ कुछ मिनट योग के लिए निकालें तो इसका लाभ हम लंबे समय तक उठा सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
0: खेल की प्रतिभा योग के साथ त्रिशा ने हमारे दोस्तों को सुनाई। योग जीवन का आधार बनते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाता है। योग की यात्रा को अपने सुंदर शब्दों में पिरोने आ रही है पूजा।
2: रोगों से पीड़ित सबका तन, योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन। नमस्कार, मैं के पूजा खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्षा 8वीं से आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इस दिन पर भारत में एक बड़ा आयोजन आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में भाग लेने वाले लोगों को देखने का यह बहुत अच्छा मौका था। भीड़ के बीच बहुत खुशी और उत्तेजन थी। समय गुजरने के साथ उत्साह कम नहीं हुआ, या न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी विकसित हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 के बाद वर्ष 2016 में आयोजित दूसरे योग दिवस में भी लोगों को उत्साह के साथ इकट्ठा होकर देखा गया। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मुख्य आयोजन आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भीड़ का जोश बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। योग आसन करने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोगों के साथ श्री मोदी जी ने इस समारोह में योग आसन का भी अभ्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रेरित भाषण दिया, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में और अधिक उत्साह के साथ मनाया गया। जैसे जैसे अधिक लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं और अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं, वैसे वैसे योग की संख्या और इस भागीदारी वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे इस उम्र में मन

0: शरीर और सोच अभी भी काम करती है। योग दिवस के रूप में एक विशेष दिन में माने जाने के पीछे का कारण है हमारे जीवन में योग को करने के महत्व पर बल देना है। रोगमुक्त जीवना जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत।
1: चलते चलते आज का आपकी रीता दीदी का मंत्र सुनते हुए जाइए दोस्तों, योग भगाए रोग और बच्चों को बनाए सबसे स्मार्ट लोग। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। चलते चलते आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले रविवार फिर मिलते हैं इसी स्टेशन पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।
2: अभी बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत, जे आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन, पंडित भीमसेन जोशी का गायन और पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन सुनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई पर बजाया राग जौनपुरी।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।
4: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
5: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
4: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: श्रोता, शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन, पंडित भीमसेन जोशी का गायन और पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन सुन रहे थे।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से और आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। आइए इस विशेष दिन पर योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें।

0: दोस्तों आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि आप कार्यक्रम में अपनी मन पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारा नंबर है 2325588 और 2325400। हमारे द्वीपों का स्टडी कोड है 0319203192। नंबर दोबारा नोट कर ले, 2325588 और 2325400। दोस्तों बातों ही बातों में कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए बातें कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, हेलो फरमाइश, गुड मॉर्निंग।
0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
1: पहले दो लाइन बोलो। सफलता तीन चीजों से मापी जाती है, सफलता तीन चीजों से मापी जाती है, धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान, मन की शांति केवल योग से मिलती है ना।
0: किन से बात हो रही हमारी? बहुत अच्छी बात कही आपने
1: जी। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ
0: जी। अनूप जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने भी आज सुबह योग किया?
1: जी जी जी जी, बहुत, क्या कहूँ, मतलब मैं तो ऐसे में योग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, 10 किलोमीटर जाता हूँ और लौटता हूँ, मतलब ऐसे में मेरा योग हो जाता है। लेकिन ये जो घर में बैठ के, कोई क्लब में बैठ के, ये तो मेरा समय नहीं है, मतलब पाके ये जो है वो तो प्राणायाम अनुलोम विलोम है, वो मन शांति आती है ना।
0: जी जी, योग हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। अनूप जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आज इस सिलसिले में, इस प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक।
0: गाने के बोल
1: का बोले से है, मेरा चांद मुझे

0: प्रणाम।
1: मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।

हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, कौन बोल रहे हैं? पूरन वर्मा जी बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सर, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। हेलो, पूरन वर्मा जी बताइए, आज हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा गाना है जो आज आप सुनना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा गाना चुना है आपने। क्या करते हैं पूरन वर्मा जी आप? बहुत ही अच्छी बात है। आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं अपने खेतों में? अच्छा, इस समय आपके खेत में कौन सी फसल लगी हुई है? अच्छा, तो बताइए आप अपने दिन की शुरुआत कितने बजे करते हैं? हेलो, हेलो पूरन वर्मा जी, आपकी आवाज़ हम तक बहुत ही धीमी आ रही है। चलिए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: जी नमस्ते
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए अपना हालचाल, क्या करते हैं आप?
1: मैं किसानी का काम करता हूँ।
0: खेती का काम करते हैं? बताइए आज कौन सा गाना चुना है आपने?
1: फिल्म का नाम है हीना और गाने के बोले देर ना हो जाए।
0: बहुत ही अच्छा गाना चुना है आपने। आज अंतर्राष्ट्रीय

0: रेडियो तो हमारे साथ नहीं रहता है, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनते रहते हैं
1: जी,
0: अगर
1: जी,
0: हम योग करते हुए चलते हैं ना तो भी मतलब साथ में रेडियो रहता है हमारा।
1: अच्छा, कामों के साथ साथ आपका मनोरंजन भी हो जाता है।
0: जी बिल्कुल
1: जी जी। खेती बाड़ी के अलावा आपके क्या क्या शौक रखते हैं आप?
0: खेती बाड़ी के अलावा मैं एक भजन गायक भी हूँ।
1: अच्छा, भजन गायक हो?
0: जी हाँ जी, हमारे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, इसमें 2 हारमोनियम बजाते हैं, 4 हम गाने वाले, 1 ढोलक, 1 तबला बजाते हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शौक रखते हैं आप। चलिए,
0: यहाँ 8 हफ्ते दिन में मतलब हमारा प्रोग्राम होता रहता है हमारे आसपास के एरिया में।
1: जी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। चलिए, आपकी पसंद पर सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महापाल, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम आपसे।
0: जी जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: जी बिल्कुल मैम।
0: कौन बात कर रहे हैं आप? आपका शुभ नाम?
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा।
0: शिवा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना चुना है आपने?
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी सुनने वालों को और आपकी पूरी टीम को योग दिवस शुभकामनाएं मैम।
0: आपको भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, कौन सा गाना चुना है आज आपने?
1: मैम जैसे कि आज फादर्स डे भी है।
0: सर, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, कौन सा गाना चुना है आज आपने?
1: मैम अकेले हम, अकेले तुम मूवी का, तू मेरा दिल तू मेरा जान।
0: अच्छा,
1: और ये मैं गाना डेडिकेट करूंगा मेरे फादर को।
0: जी जी, आज फादर्स डे भी है, आप सभी श्रोताओं को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी धन्यवाद मैम, और उसी चैनल के माध्यम।
0: जी जी बताइएगा।
1: मैम मैं अपने पिताजी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा फादर्स डे की।
0: जी जी जी जरूर। बताइए शिवाजी, आपने अपने पिताजी से ऐसी कौन सी आदत सीखी है जिसे आज भी आप अपनाते हैं?
1: मैम सबसे पहले तो चीज मैंने ये सीखी है
0: जी
1: कि कभी भी कितना क्रोध आए, गुस्सा आए, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना।
0: जी जी जी, आपके पिताजी की ऐसी कौन सी बातें जो सबसे आपको ज्यादा पसंद है?
1: मैम उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अपन कभी टेंशन में होते हैं तो वो इस तरह से अपन को मोटिवेट करते हैं।
0: जी जी
1: के दिनी बन जाता है मैम।

0: जी, बहुत ही अच्छी बात कही है। और फादर्स डे के साथ साथ आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो आज आपने आज सुबह योग किया?
1: जी बिल्कुल मैम, देखिए मैं तो उन लोगों से ये अपील करता हूँ कि एक दिन योग दिवस योगा करने से योग नहीं होता है, हमको डेली योग करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, फादर्स डे के आपके पिताजी के लिए ये बहुत ही अच्छा गाना चुना है आपने।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: हम तो एप्पल की जो है बागवानी रहती है, उसके हम देख रेख करते।
0: क्या बात है, और खेतों में काम करते हुए आप रेडियो सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल ऐप के माध्यम से और डीटीएच के माध्यम से सुनते हैं। इस वक्त में डीटीएच से सुन रहा हूँ और बहुत क्वालिटी साउंड के साथ सुन रहा हूँ।
0: कौन कौन से कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: जैसे कि आपका आपकी जैसे आते हैं हेलो डॉक्टर सुबह 7:30 बजे, उसमें मैं जोड़ता हूँ। और सोमवार को कृषि जगत लाइव फोन आता है, उसमें जोड़ता हूँ। और बाकी ये हेलो फरमाइश जितने भी हैं, हेलो डियर फ्रेंड, जुगवाणी, ये सभी में सभी प्रोग्राम में सुनता रहता हूँ और सब रहता हूँ।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आप सारे कार्यक्रम सुनते रहिए। हमारी जो आकाशवाणी श्री विजयपुरा में मनोरंजन के साथ साथ कई जानकारियां भी देती है ना
1: जी? क्योंकि जब आप सोमवार को पेश करते हैं 6:30 बजे से जो है कृषि जगत लाइव फोन इन होता है, इसमें हम पशुओं की जानकारी घर बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: और कई बार हम विशेषज्ञ से सवाल भी पूछते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन से पशु की कितनी कितनी मात्रा में हमें।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही है। जी जी, बताइए आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज गाना भी सुनूंगा, सबसे पहले तो आपको आज की दिन की फादर डे की भी आज की शुभकामनाएं। और आज जो है विश्व योग दिवस भी है, तो योगा डे भी है, तो उस भी शुभकामनाएं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो हम योग करते हैं तो हम इसको जो है त्योहारों पे ना ले, और त्योहार जो है क्या बोलते हैं, योग जो है हमारा दिनचर्या बनना चाहिए।
0: जी जी जी, हमें योग हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में भी बहुत मदद करती है। बताइए कौन सा गाना चुना है आज आपने?
1: जी आज जैसे फादर डे भी है, तो उसके उपलक्ष्य में एक गाना सुनना चाहता हूँ, क्या बोलते कयामत से कयामत तक। और गाने के बोले पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
0: बहुत ही अच्छा गाना चुना है आपने। बताइए आपके अनुसार एक अच्छे पिता की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है?
1: मेरे अनुसार जो है अपने जो है पिता की जो पहचान ये होती है कि जैसे कि जो फादर जो है गाइड करते हैं, जैसे कि मानो कि एक बेटा काम किसी चीज पे सफल काम करना चाहता है, क्या उसके कुछ सपने हैं, तो उसमें है फादर जो है उसका मोटिवेट करते हैं कि आप इस चीज के जो है आप खड़े उतरो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ऐसी रहूंगा नहीं, सब हेल्प भी करते हैं। लेकिन हमें अपने पिता को या अपनी माता को समझना चाहिए। लेकिन और एक बात मैं इसमें और भी जोड़ना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, फादर डे तो आप ना देते
0: जी
1: आज के दिन, लेकिन जब आप अपना मकसद में कामयाब होते हैं तब आप अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं कि आप ये जो साल में जो आप फादर डे मनाते हैं बस आप अपने पिता को गिफ्ट दो या कुछ ये करो, लेकिन आप ये है कि अपने बड़ा फैमिता का सारा बनो ताकि बड़ा सबन कोई कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
0: जी जी, राकेश जी आपके जो विचार है वो जो हमारी श्रोताएं सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे आपके विचार पाकर, और आपने जो भी है अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अपने पिताजी का जो सम्मान करेंगे, है ना?
1: जी जी,
0: तो चलिए इस फादर्स डे पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी को राधे राधे। केसरी
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। आज
0: जी बताइए, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना चुना है आज आपने?
1: आप वो सुनवा देना, मुझे रब तुझ रब ने बनाया किस लिए।
0: बहुत ही अच्छा गाना चुना है आपने। बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अच्छा, आप घरों की पेंटिंग करते हैं या आर्ट पेंटिंग भी बनाते हैं?
1: आर्ट पेंटिंग बनाता हूँ दीदी, दीवार लेखन चित्रकारी।
0: अच्छा, आप कब से पेंटिंग का काम कर रहे हैं?
1: इसको 15-1 साल हो गए करीब।
0: अच्छा, कोई यादगार अनुभव हमारे जो श्रोताओं को साझा करना चाहेंगे आप?
1: हाँ, यादगार अनुभव यही है दीदी कि इसमें अच्छा बहुत लगता है, काम करने में बोरियत नहीं होती,
0: जी
1: हॉबी है, खुशी है, इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि अब जगह जगह से कॉल आते हैं काम
0: जी जी जी
1: के लिए, तो बोरियत कभी भी नहीं होती। आज हम एक गांव जा रहे हैं तो कल दूसरे गांव या
0: जी
1: दूसरी जगह पर।
0: आज क्या आपने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया?
1: हाँ, योग के वो बहुत सारे रूप हैं, मैं तो बस एक ही योग करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठकर घूमने जाता हूँ, तो
0: जी जी
1: वो भी योग ही, योग में ही आता है, कहते हैं करो योग रहो निरोग।
0: जी जी बहुत अच्छी बात कही है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होता है और रोज थोड़ा समय योग के लिए जरूर निकालिएगा, है ना?
1: बिल्कुल निकालना चाहिए वो, क्योंकि जरूरी है, स्वस्थ स्वस्थ शरीर होना भी बहुत
0: जी
1: जरूरी है।
0: जी जी तो चलिए, समय के अभाव के कारण जो
1: हाँ
0: हमारे
1: हाँ बस
0: जी
1: दो तीन मित्रों को याद करना
0: जरूर
1: चाहूंगा, फिर
0: जरूर
1: आप गाना गाना प्ले कीजिएगा, आप

और विजयपुरम से पूर्णी माँ जी हैं, राम बाबू शर्मा जी, मामीलाल चंदेल जी, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी और रमेश प्रजापति जी।

0: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: केशव शर्मा जी, समय के अभाव के कारण जल्दी से बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप। हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हेलो हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं बूबा फिल्म का सुना दीजिए मैडम।
0: कौन सा गाना? कौन सा गाना?
1: मैं बूबा फिल्म का मैडम।
0: चलिए, आपकी पसंद पसंद।

0: हमारे जो श्रोता ये गाना सुनना चाहते थे महबूबा फिल्म का गोरी तोरी, किसी तकनीकी कारणवश हम आपको नहीं सुनवा नहीं पाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। चलिए, समय के अभाव के कारण यहाँ रुकना चाहूँगी और हेलो फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले रविवार इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल और हमें यानी लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश,
4: हेलो फरमाइश,
5: हेलो फरमाइश।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, सरहदों पर डटे वो वीर जवान जिनकी वजह से हमारे घरों में सुकून और चैन है, जब हम अपने सपनों में खोए होते हैं तब वो जागकर देश की हिफाजत करते हैं। उनकी हिम्मत, त्याग और देशभक्ति को सलाम, क्योंकि सैनिक सिर्फ सीमा के रक्षक नहीं बल्कि हमारे गर्व और सम्मान की पहचान है।

सरहद पर खड़े जवानों के दिल में भी अपने घर परिवार की यादें बसी होती है। देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए वे अपनों से दूर तो रहते हैं, लेकिन उनके प्यार और यादों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। कभी किसी चिट्ठी का इंतज़ार, तो कभी किसी संदेश की आस, और कभी घर लौटने का सपना। यही भावनाएं उनके हौसले को और मजबूत बनाती है।

दोस्तों, सीमा पर डटे हमारे वीर सैनिक हर मौसम, हर चुनौती और हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए देश की रक्षा करते हैं। अपने परिवार से दूर रहकर भी वे पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उनका साहस, त्याग और देश के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है।

दोस्तों, वतन से मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो हर दिल को अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से जोड़ता है। जब देश के लिए सम्मान और समर्पण दिल में बस जाए तो हर

दोस्तों, वतन से मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो हर दिल को अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से जोड़ता है। जब देश के लिए सम्मान और समर्पण दिल में बस जाए तो हर कदम और हर कोशिश का एक खास मकसद बन जाता है। अपने वतन के प्रति प्रेम, गर्व और निष्ठा की यही भावना दिल को छू जाती है और हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देती है।

श्रोताओं, अभी आप सलाम सोल्जर्स कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए उस्ताद अली हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में कुछ गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में कुछ गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2:12 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण
1: भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agraye in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
1: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships

0: योग दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आज सवेरे केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू एवं द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम की विशेष रिपोर्ट।
1: विश्व भर में मनाए जा रहे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का राज्य स्तरीय समारोह ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर उत्साह, अनुशासन और जनभागीदारी के साथ आयोजित किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस द्वीप पर प्रातःकालीन वातावरण में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर योग और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

0: योग पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की अनमोल देन, जीवन में सुख और शांति का नया उजाला,
1: नया जियारा।
2: सुबह 5:30 बजे से प्रतिभागियों का आगमन प्रारंभ हुआ। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने समारोह स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, जिसमें मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस, पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव आईपीएस, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। केंद्रीय संसदीय कार्य तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी विशेष नौकाओं के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पहुंचे, जहां स्वास्थ्य सचिव, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त तथा जिला पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण से हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू, उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। इसके पश्चात अतिथिगण मंच पर पहुंचे और राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान के साथ समारोह का औपचारिक शुभारंभ हुआ। पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया तथा दीप प्रज्वलन के साथ योग और स्वास्थ्य के इस महापर्व का उद्घाटन किया गया।

0: समारोह का मुख्य आकर्षण कोलकाता के रेड रोड से आयोजित राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रहा, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश भर के लाखों लोगों की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर उपस्थित प्रतिभागियों ने भी इस राष्ट्रीय आयोजन से स्वयं को जोड़ा।
1: यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ to aspire for constant growth. Our target must

to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए

0: योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसके उपरांत योग संगम के अंतर्गत सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन

0: तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसके उपरांत योग संगम के अंतर्गत सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हुए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। समुद्र की लहरों, ऐतिहासिक परिवेश और उगते सूर्य की साक्षी में किया गया ये सामूहिक योगाभ्यास स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुपम संगम बन गया।
2: चलिए एक लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे से पूरी श्वास बाहर, अपने श्वासों को सामान्य स्थिति पर लेकर आएं। अगला अभ्यास है वक्रासन। वक्रासन जिनको डिस्क रिलेटेड समस्या हो, एब्डोमिनल सर्जरी, हर्निया, अल्सर के समय इस अभ्यास को ना करें, गर्भ अवस्था में भी इस अभ्यास को ना करें। चलिए दाएं पैर के घुटनों को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटनों के पास रखेंगे, दाएं हाथ को शरीर के पीछे लेकर जाएंगे, बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर की पंजे को बाएं घुटनों के पास रखेंगे, दाएं हाथ को शरीर के पीछे की ओर रखेंगे, बाएं हाथ से दाएं पैर की पंजे को पकड़ने की कोशिश करें, श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर घुमाएं। इस आसन में 3 से 5 श्वासों तक का बने रहें।
1: योग सत्र के उपरांत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ समारोह का औपचारिक समापन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित ये राज्य स्तरीय समारोह योग, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक कल्याण के संदेश का प्रभावशाली प्रतीक बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये आयोजन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते हुए लोगों को स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
3: श्रोताओं, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आज सवेरे केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू एवं द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग बैजू मैथ्यू का था। वाचिका एवं प्रस्तुति सहयोग जयशीला एवं इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

0: मौजूद हैं डॉक्टर रजनी आहूजा, तो चलिए उनसे जानते हैं योग के बारे में कुछ खास बातें। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग क्या है।
1: देखिए, WHO की डेफिनेशन भी अवेलेबल है, और मगर अगर साधारण शब्दों में योग को समझना चाहें तो खुद से जोड़ने का नाम ही योग है। योग का मतलब ही अगर हिंदी की सरल भाषा में समझा जाए तो योग मतलब जोड़ना। तो आप किन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, योग की प्रक्रिया के द्वारा आप किसको जोड़ना चाहते हैं, योग अभ्यास के द्वारा आप किसको जोड़ना चाहते हैं, तो खुद को खुद से जोड़ने का नाम ही योग है।
0: यहाँ पे हम अक्सर सोचते हैं कि योग जो है वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: योग जो है हमारे शरीर को, योगा आसनास अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो हम अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, तो उसमें उसके 8 स्तंभ हैं, यम, नियम, आसना, ध्यान, धारणा, समाधि। मगर जब हम आसन की बात करते हैं कि योगा आसनास, क्योंकि आजकल जो हमने देखा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है योगा आसनास का, योगा आसनास हमें कैसे प्रभावित करते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो ये हमें मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली तीनों तरीके से बोला जाएगा तो प्रभावित करते हैं। अगर किसी एग्जांपल के माध्यम से समझा जाए तो जैसे अगर हमारा पश्चिमोत्तासन है, पश्चिमोत्तासन जैसे कि आप बैठे हैं और अपने बैठ के अपने पैरों को छूने की कोशिश करी, जब आप उसमें थोड़ी देर रुकते हैं तो आप बोलेंगे कि ये आपके शारीरिक रूप से कैसे काम करता है। एक तो ये पूरी आपकी बैक को स्ट्रेच करता है, जो भी बैक में तनाव होता है उसको दूर करने में हेल्प करता है। ये हो गया फिजिकल लेवल पे, आपको स्ट्रेच होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, और जो रिलैक्सेशन है वो आप अपने मेंटल लेवल पे फील करते हैं। और एनाटॉमिकली आपके शरीर के अंदर ये किस तरीके से प्रभाव करता है, ये आपके ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ब्रीदिंग की अवेयरनेस को बढ़ाता है। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बेंड, जैसे कि मैं एक ही उदाहरण ले रही हूँ हमें, तो जैसे हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारा चेस्ट जो होता है उसकी कोशिश होती है कि नीचे की तरफ हम उसको लगा लें, घुटनों के पास तक पहुँच जाएँ और उसे कंप्रेस करके रखें। तो हमारे जो लंग्स हैं सिर्फ आगे तक सीमित नहीं है, पीछे भी हैं, 360 डिग्री पूरा हमारा रिब केज है उसके अंदर लंग्स हैं। तो जनरली हम जो लंग्स को, जो कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए जब हम फॉरवर्ड बेंड की प्रैक्टिस करते हैं, पश्चिमोत्तासन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपना आगे वाला जो हिस्सा है जिस पर हमारा हमेशा फोकस रहता है उसे हटा के हम अपना ध्यान, क्योंकि जब हमें इतने समय तक एक आसन में रुकना है तो हम अपना ध्यान जो है थोड़ा सा हटाना पड़ता है आगे से, तो फिर हम अपने बैक, चेस्ट के जो पीछे के जो मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं, अपर बैक मसल्स हैं, उन पर ध्यान लेके जाते हैं, अपने कंधों के पास जो क्लाविकल है उस पर ध्यान लेके जाते हैं, और इससे हम अपनी ब्रीदिंग की कैपेसिटी को और जो एरिया, जो डायमेंशन हमारे दिमाग में अभी तक नहीं पता है उसको बढ़ाते हैं। फिर अगर हम पश्चिमोत्तासन के ही उदाहरण से देखें तो हमारे फॉरवर्ड बेंड जब हम करते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स जितने भी होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो कंप्रेस जब होते हैं थोड़े समय के लिए, जब हम उनको कंप्रेस रखते हैं तो उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, जो रक्त का प्रभाव होता है उसे रोकने की कोशिश की जाती है, स्लो कर दिया जाता है बेसिकली। फिर जब आप उस आसन को छोड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं तो रक्त का प्रभाव फिर उस पर, उन ऑर्गन्स की तरफ बहुत ज़ोर से जाता है, तो उनकी काम करने की जो क्षमता होती है, जैसे मसल काम करती है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पे, ऐसे ही हम डायरेक्टली ऑर्गन्स पे काम करते हैं योग आसना के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पे, तो उनके काम करने की क्षमता जो होती है, कोई इसी प्रकार की कोई बीमारी इंटरनल ऑर्गन्स में होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है ब्लड फ्लो अच्छा। बढ़ा के,
0: मतलब आपका कहने का है कि ध्यान जो है वो बहुत ज़रूरी है योग के अंदर।
1: हाँ, एक आसन के अंदर ध्यान केंद्रित करना, या फिर हम बोला जाए आसन का मतलब ही यही है कि आप उस पोज में, उस स्थिति में, आसन मतलब स्थिति, उस स्थिति में आप रुके हुए हैं जी। मगर यहाँ पे ध्यान आप कैसे लगाएंगे, आपका मन विचलित होगा। मगर अगर आपकी सांस केंद्रित नहीं है, अगर आप सपोज करिए आप एक इंसान है जिसको सांस फूलती है और आपने डायरेक्ट पश्चिमोत्तासन में चले गए, तो आप उस आसन का जो बेनिफिट है वो जितना फील करना चाहिए तीनों स्तर पे, तब तक फील नहीं कर पाएंगे जब तक आप उतनी देर नहीं रुकेंगे। मगर हाँ, ये है कि उससे पहले के जो प्रिपरेटरी आसनास होते हैं, जो उससे पहले के जो आसन कराए जाते हैं बॉडी को खोलने के लिए या सांस के लिए, जो भी प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, उनको करने के बाद उन आसनों को होल्ड करिए जहाँ पे आप उनका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं और उनमें रुक पाएं।
0: अच्छा,
1: तो रुकना आसन का मतलब ये है, आप रुक गए एक स्थिति में, स्थिर सुखम आसन, जिसमें आप स्थिर हैं, सुख में हैं, तो वो आसन है।
0: अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है,

बाहर होने वाली बातों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता बहनों, लेकिन हमारे मन में होने वाली बातों को नियंत्रित कर सकते हैं और ये काम ध्यान से हो सकता है। नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में, जिसे लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है 21 जून और आज के दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो चलिए, हमने सुविचार तो जान लिया है, अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं योग दिवस के साथ। और आपको आज हमारी एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं, जहां हमें मौका मिला डॉक्टर रजनी आहूजा जी से बात करने का, योग किस तरह रख सकता है हमें निरोग उसके बारे में। तो आइए, उनसे हुई हमारी भेंट वार्ता आपको सुनवाते हैं और जानते हैं योग के बारे में थोड़ी और खास बातें। तो आज हमारे साथ

0: कि क्या योग में कुछ नियम भी होते हैं?
1: जी, योग में नियम तो बहुत होते हैं, मगर अगर हम बेसिक नियम की बात करें तो जैसे कि अगर आप योगा आसनास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो योगा आसनास के लिए आपको खाने और योगा आसना की प्रैक्टिस के बीच में 4 आवर का गैप आपका मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। अगर आप कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी जूस का सेवन कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे का आपका मैक्सिमम आपको इतना गैप मेंटेन करना है कोई भी आसन करने से पहले। तो ये बेसिक नियम है, स्वच्छता का ध्यान रखना। और अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो यम नियम सबसे पहले आते हैं अष्टांग योग में। यम नियम का मतलब ही यही है कि आपको कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से करनी है। जैसे कि अगर हम यम की बात करें तो आपको अहिंसा नहीं करनी है। अच्छा, अब अहिंसा से लोग बोलते हैं जीव जंतु को मारना अहिंसा होती है, ऐसा नहीं है। लोग अपने प्रति भी बहुत कठोर होते हैं, जो काम उनका शरीर करने के लिए रेडी नहीं है फिर भी वो उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये
0: जी
1: एक तरीके की अहिंसा है। आप अपने प्रति भी अगर सचेत नहीं है, सजग नहीं है, आप अपने शरीर की और अपने मन की बात नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी एक प्रकार की अहिंसा है। फिर सत्य, सत्य तो हम जानते हैं। अब सत्य नैतिक होना, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है
0: जी
1: कि
0: जी
1: हमें सत्य
0: बिल्कुल
1: क्यों बोलना चाहिए। फिर भी जहाँ तक इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो मैंने इतने सालों में समझा है, वो ये होता है कि पहले तो पेरेंट्स बोलते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर क्यों नहीं बोलना चाहिए ये नहीं बोला। क्योंकि जब आप दूसरों से झूठ बोलते हैं ना, तो ब्रेन आपका उस तरीके से उस पैटर्न में काम करना शुरू कर देता है। आप सच भी बोलना चाहेंगे ना, तो भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो जब आप सच बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, और तो झूठ तो आप बोल ही रहे हैं क्योंकि वो आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आ गया। तो जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना जीवन में, जब खुद को समझना चाहेंगे, इस संसार को समझना चाहेंगे ना, तो ब्रेन हमेशा कंफ्यूज रहेगा सत्य और असत्य के बीच में, वो समझ नहीं पाएगा। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है रेदर देन मोरल इम्पैक्ट।
0: अच्छा
1: मोरल इम्पैक्ट, आप किसी का क्या नुकसान कर लेंगे वो तो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड है, मगर अपने ऊपर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि छोटा नहीं होता, आदत बन जाती है, बस वैसे ही है। फिर अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है जो किताबों में लिखा है उस प्रकार से, वही है कि आप नियम के हिसाब से चलें, सुबह उठें, खाएं पिएं, अपना जो भी व्यायाम करना है वो करें, और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, अब मॉडर्न ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसे मत करिए, जो चीज़ आपकी एनर्जी को कम करता है उसे मत करिए। कुछ नियम हैं अपने आप को सही रखने के, उनका पालन करिए, और ग्रीडी मत होइए, लालची मत बनिए। ये मगर अष्टांग योग में बहुत पहले बोले जाने वाले नियम हैं, मगर मुझे लगता है कि ये कुछ एथिक्स हैं जो हर किसी रिलीजन में पहले से बताए जाते हैं,
0: जी
1: चाहे कोई भी
0: बिल्कुल
1: रिलीजन हो। तो आप रिलीजियस हैं तो भी इन चीज़ों को समझते ही हैं, और हर रिलीजन इसी चीज़ को प्रावधान देता है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, नैतिकता जो है, एक समाज को और खुद को संभालने के जो तरीका है सोसाइटी को, इसीलिए रिलीजन बनाए गए, और सभी रिलीजन में इसी चीज़ को मान्यता पहले दी गई है। और नियम भी वैसे ही हैं कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, संतोष रखें जो मिलता है उसमें। अब संतोष रखना, कितनी चीज पे जाके आपको रुकना है ये भी आपको खुद पता होना
0: जी
1: चाहिए,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि संतोष का कोई मापदंड तो है नहीं,
0: बिल्कुल
1: है ना। जहाँ किसी इंसान की प्यास 1 गिलास पानी में बुझती है, तो किसी की 8 गिलास में बुझ जाती है। वो संतोष सबके लिए अलग अलग है, मगर आप अपना पैमाना नापिए और ढूंढिए, और उसको फिर वहां पे रोकिए। और फिर डिसिप्लिन रखना, डिसिप्लिन वही आपके जो सुबह उठने का नियम है या सोने का नियम है, जो भी आपके शरीर के लिए किसी भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर ने बताया है, खान पान का भी नियम जो भी किसी भी डॉक्टर ने बताया है, आप उसे फॉलो करिए, उस पर विश्वास रखिए। अब विश्वास रखना ये रिलीजियसली भी ज़रूरी है, और एक सोसाइटी और समाज को बचाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप क्या रखेंगे?
0: जी बिल्कुल
1: विश्वास पे तो
0: विश्वास पे दुनिया
1: दुनिया कायम है।
0: कायम
1: अब हमें भी विश्वास है बहुत सारी चीज़ों पे कि सब अच्छा होगा, इसलिए हम अगले दिन उठ के उसी क्षमता से, उसी एंथुजियाज्म से, उत्साह से हम लोग जाके काम करते हैं कि नहीं कुछ तो बदलेगा। तो
0: है बिल्कुल
1: विश्वास रखना ज़रूरी है, चाहे रिलीजन पे हो चाहे खुद पे हो, और डिसिप्लिन रखना और सरेंडर, जो है जैसा है उसके साथ खुद को समझ के

0: चलने की जिम्मेदारी है सरेंडर। वहाँ पे सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप सबके सामने झुक जाएं। जैसे अभी मैं पीछे एक पॉडकास्ट देख रही थी तो उसमें बहुत अच्छा बताया था कि कृष्ण भगवान ने एक हाथ में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक हाथ में शंख है, तो एक हाथ में उनके होता है सुदर्शन
1: जी,
0: चक्र इज
1: सुदर्शन
0: ऑल्सो
1: चक्र।
0: देयर। तो वो सरेंडर का मतलब है कि बस अपने हथियार डाल दिए। ज्ञान भी होना चाहिए और झुकने की क्षमता भी होना चाहिए, और जब आप झुक नहीं पाए तो लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर शरीर के अंदर क्षमता ही नहीं आएगी, तो आप झुकेंगे कैसे?
1: जी
0: जो पेड़ अगर अड़ा हुआ है, आंधी तूफान आए तो वो टूटेगा, वो झुकेगा नहीं। मजबूती झुकने में है, तो उसके लिए आपको पहले मजबूती क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो झुकना ही कमजोरी है। फिर वो मानसिक बीमारी है। बिना समझदारी के किसी भी चीज़ के लिए झुकना मानसिक रोग में धीरे धीरे करके वो परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में और भी उसके व्याख्यान मिलते हैं हमें।
1: अब यहाँ आपने बीच में बात करी आहार के बारे में, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि योग में आहार का क्या योगदान होता है?
0: जी देखिए, जो हमने किताबों में पढ़ा है वो यही है कि 3 बार खाए रोगी, 2 बार खाए भोगी और 1 बार खाए योगी। तो 1 बार भोजन मगर आप करेंगे कैसे? समस्या
1: जी
0: ये है ना,
1: जी
0: समस्या ये नहीं है कि आप सबको योगी बनना है, समस्या ये है कि आपको जानना है कि आपको बनना क्या है। आपको योगी बनना है, आपको रोगी बनना है, या आपको भोगी बनना है। भोगी मतलब संसार में आपको जो भी मिला है या भी जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उस तरीके से आप 2 बार आहार का नियम लें। अगर आप संसार को समझ चुके हैं और आप संसार को और समझना नहीं चाहते और संसार को छोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं या त्यागना चाहते हैं, तो आप योगी की तरह एक एक समय का भोजन। और ये जो रोगी वाला जो कैटेगरी है जिससे सभी ग्रसित हैं, आजकल के टाइम में 95% लोग रोगी हैं। तो इसका मतलब जब हमारी किताबों में, हमारे बुक्स में, हमारे वहाँ पे सब इतना व्याख्यान किया गया है कि 3 बार आहार आपको रोगी बनाता है, तो आप भोगी बन के देखिए ना। जो आपने सुविधा साधन जोड़े हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए भी तो शरीर ही चाहिए ना,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप शरीर का इस्तेमाल करिए, आप भोगी बनिए। मैं नहीं बोलती आप योगी बनिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को योगी बनने की, मगर आप भोगी तो बनिए ना 2 बार आहार
1: दो
0: लेके।
1: बार आहार लीजिए।
0: जी
1: यहाँ पर हम अक्सर सुनते हैं कि योग जो है वो हमें निरोग रखता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे?
0: देखिए, योग निरोग रखता है। अगर आज जैसे हम बात करें, आज कल हमारे को जो ज़्यादा परेशानियाँ जो हम देख रहे हैं समाज में, या फिर आप रिसर्चेस उठा के देखिए, कुछ भी गूगल करिए, सारी की सारी मानसिक बीमारियाँ, सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस हैं। उसी पे सारी योगा थेरेपी भी बेस्ड है। आजकल यूनिवर्सिटी में, योगा यूनिवर्सिटीज़ में भी सिर्फ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स पे बात की जाती है, क्योंकि ये वो बीमारी नहीं है जो पेंडेमिक है। ये जो आजकल जो हमें जो मिल रही है बीमारी, ये जीवन शैली से मिल रही है, ये हमें पेंडेमिक के जैसे नहीं मिल रही। जैसे कोरोना आया था वो पेंडेमिक था, है ना, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे। मगर जो हमें डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये सब जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं और साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस हैं। जहाँ पे हम 3 समय भोजन कर रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए, लिखित बात है किताबों में कि आप रोगी बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर आप योग आसनास की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि आसनास, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट है कि आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, और तो आप 2 टाइम आहार का नियम पहले लेके चलें, उसके बाद में जो बेसिक आसन है, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप YouTube में उठा के कोई भी आसन करिए, हो सकता है कि जर्नी लंबी हो, मगर अगर आप बेसिक एक सूर्य नमस्कार भी अगर आप उठा लेते हैं ना, अगर कर लेते हैं डेली नियम में, अगर आप 12 का सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको लगेगा कि जर्नी थोड़ी लंबी है, क्योंकि क्योंकि आगे आसन और भी हैं जिनमें आपको रुकना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि आप जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके बहुत बेनिफिट हैं। और कुछ नहीं होगा तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, आपकी बॉडी की एनर्जी रेगुलराइज होगी, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो काम करेगा। आपका जो बॉडी में आपको सुस्ती लगती है, जाम लगती है, सुबह उठते शरीर में दर्द होते हैं, वो होने बंद हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, बेसिक सूर्य नमस्कार करिए। तो अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छे से चला लिया, मैं सिर्फ यहाँ पे वॉकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल बहुत लोग सिर्फ वॉकिंग ही करते हैं, तो मैं वॉकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसका बहिष्कार भी नहीं कर रही हूँ, उसका

0: एक अलग रीजन है, मगर अगर आपने पूरे शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, सूर्य नमस्कार में 12 आसन और 12 सूर्य नमस्कार के अगर आपने राउंड्स किए, आप पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं। तो जब आप पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि 1 घंटा वॉकिंग करना है। आप वो चीज 10 मिनट में खत्म करके भी आप वो सेम चीज अचीव कर सकते हैं, क्योंकि खाने का नियम तो आप वॉकिंग करें, चाहे आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, चाहे आप जिम करें, खाने का नियम तो आपको हर जगह पे लेना ही पड़ेगा। तो जब हमारा शरीर पूरी क्षमता से काम करता है, तब हम जो भी काम कर रहे हैं उसे अच्छे से कर पाते हैं, और रोगों की शक्ति तो जब आप एक्टिव रहेंगे तो अपने आप बढ़ेगी ना।
1: बिल्कुल सही आपने कहा, हम जब एक्टिव रहेंगे तो रोग अपने आप दूर रहेंगे हमसे।
0: जी,
1: एक धारणा है कि मासिक धर्म के दौरान या फिर गर्भ अवस्था के दौरान योग नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है?
0: देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान योग के आसनास और उसके जो टीचर्स होते हैं, जो प्रशिक्षक बोलूंगी मैं, इनके टीचर्स होते हैं, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान कुछ सेमेस्टर्स होते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, तो उस समय तक वो कुछ और तरीके के आसन करते हैं और उसके बाद में वो कुछ और तरीके के आसन करते हैं। तो मैं उसमें प्रशिक्षक नहीं हूँ, मगर मुझे इस बात का जरूर ज्ञान है कि योग करते हैं तो ज़रूर करते हैं, मगर आप प्रशिक्षित टीचर के साथ जिन्होंने इसके कोर्सेज किए हैं गर्भ अवस्था के दौरान, स्ट्रिक्टली आप उन्हीं के साथ उनके प्रशिक्षण के अंदर और उनके सामने ही योग करें। नहीं, इसे आप यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लासेस से ग्रहण मत करिए। हाँ, आप प्राणायाम के सरल नियम ले सकते हैं गर्भ अवस्था के दौरान, आप कपालभाति नहीं कर सकते, जैसे कि वेरी ऑब्वियस रीजंस के लिए आप नहीं कर सकते, तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, भ्रामरी का अभ्यास करें, वो आपके लिए, वो दोनों ही स्थिति में आपके लिए लाभदायक है। अब बात रही हमारी मासिक धर्म की, मासिक धर्म के में आपको सूक्ष्म व्यायाम जरूर करने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है, जिसमें आपको, अगर मासिक धर्म से जुड़ी हुई और भी समस्याएं आपने अपने जीवन में हैं आपके, तो आप सूक्ष्म व्यायाम का नियम ज़रूर करिए, उनको मत छोड़िए। तो अगर आपके मासिक धर्म ज़्यादा आते हैं तो वो रेगुलेट हो जाएंगे, कम आते हैं तो भी आपको उसमें आराम पड़ेगा। दोनों ही स्थिति में अगर आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का नियम करते हैं, योग के आसनास नहीं कर सकते मगर सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हम व्यायाम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे आसन हैं जो हमें नियमित रूप से करने ही चाहिए?
0: हाँ, नियमित रूप से आसन या क्रिया, मैं क्रिया पे जरूर जोर देना चाहूँगी। यहाँ पे हमने बहुत आसन की बात करी है और हमने आसनों को बहुत तरीके से समझाया भी है, मगर मैं क्रिया पे जरूर ध्यान देना चाहूँगी। जैसे कि अभी जो हम लोगों को सुन रहे हैं, अभी मैं उनको सिखा तो नहीं सकती हूँ कि ये आप जाके मैं पर्सनली, मगर मैंने अपने जीवन में जितने भी पेशेंट्स या अपने स्टूडेंट्स जिनको भी इन क्रियाओं के द्वारा हेल्प करी है, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमने वेट लॉस भी देखा है और हमने ऐसे एलर्जीज और सुबह मॉर्निंग स्नीजिंग हुआ या अस्थमा के जो पेशेंट हुए उनके अंदर हमने बहुत बहुत अच्छा उनके अंदर हमने परिवर्तन देखा है। तो क्रिया में एक जलनेति हुआ, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे सर्च करेंगे, जलनेति के बेसिक नियम हैं। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप नमक का इस्तेमाल मत करिए, आप ल्यूक वार्म वाटर से सुबह शाम डेली जलनेति करिए। जलनेति के बाद जो क्रिया करी जाती है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। मगर आप जलनेति का नियम लीजिए, आप जलनेति का नियम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? जलनेति क्या करता है, आपके दोनों नॉस्ट्रल्स को खोलने का हेल्प करता है, उसमें भी जो म्यूकस, जो भी आपने, जो भी सर्दी जुकाम या म्यूकस आपको जो जमा हो गया उसको खोलता है। और अगर आपके दोनों नॉस्ट्रल अपने समय से डोमिनेंट और डॉर्मेंट, मतलब एक की शक्ति बढ़ रही है एक की घट रही है, और ये हमारी शरीर के प्रोसेस के हिसाब से चलता है, अगर दोनों नॉस्ट्रल ही बंद है और आपने उनको खोलने के लिए कुछ नहीं किया, कोई भी क्रिया नहीं करी, अगर आपका शरीर सक्षम नहीं है सूर्य नमस्कार और आसन करने के लिए, आप जलनेति करिए, आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं अपनी नेजल पैसेजेस को क्लियर करने के बाद, तो आप देखेंगे कि अनुलोम विलोम का जो इफेक्ट है वो बदल गया, आपको फोर्स नहीं करना पड़ा किसी भी चीज को। भस्त्रिका का जो क्रिया है, जो प्राणायाम है, वो बहुत कंडीशंस में रिस्ट्रिक्टेड है, वो सबके लिए नहीं है। कपालभाति बहुत कंडीशंस में रिस्ट्रिक्टेड है, सबके लिए नहीं है। आप अनुलोम विलोम सबको कराना चाहते हैं और सब करिए, 7 से 8 मिनट डेली करिए, मगर उससे पहले जलनेति करिए। जब आप जलनेति करके जब आप

0: अनुलोम विलोम करने बैठेंगे, आपके जो सांस है वो बहुत फ्रीली आएगा जाएगा, आप देखेंगे कि आपको अनुलोम विलोम का प्रभाव बदल गया। मगर आप अगर क्रिया नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही आप अनुलोम विलोम किए जा रहे हैं और नाक खुला नहीं हुआ, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अनुलोम विलोम भी नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे आप 10 साल तक सेम करते रहिए, आप बोलेंगे अनुलोम विलोम करते कुछ होता तो है नहीं। तो आप चीजों को समझिए कि आपको क्या करना जरूरी है। और दूसरी चीज मैं जिस पे जोर देना चाहूंगी, ये एक क्रिया है जो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा, बहुत ईजी स्टेप्स है, शंत प्रक्षालन क्रिया बोलते हैं इसको। अगर आप इसको नींबू के रस के साथ अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नींबू से गले में दर्द होता है तो गर्म पानी के साथ करिए, गर्म पानी के साथ ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उसके साथ ये सब कर सकते हैं। बहुत इजीली इसके स्टेप्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे 5 स्टेप्स हैं। हाँ, मगर कुछ स्टेप्स हैं जो आप एज होने की वजह से या आपके शरीर में कोई परेशानी होने की वजह से आप नहीं कर सकते, तो उसके मॉडिफिकेशंस भी होते हैं कि आप इस सेम प्रैक्टिस को किस तरीके से कर सकते हैं। शन प्रक्षालन क्रिया में 5 आसन आते हैं, ताड़ासन, त्रिकय ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदरकृशासन और उसके बाद शवासन। शवासन इज अ रेस्टिंग पोज। तो ये 5 आसन करने के बाद आप रेपिटेटिव 10-10 करिए और उसके बाद आप देखेंगे शरीर में एक हल्कापन और शरीर में जो भारीपन, जनरली हमें जो सुबह उठ के जो फील होता है, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैम हम सुबह उठ नहीं पाते बिस्तर से, तो ये जो होता है ये जब आपका जो डाइजेशन होता है बहुत स्लो होता है, आपके मोशन क्लियर नहीं होते। आप अपने पेट को साफ रखिए, मोशन को क्लियर करिए, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई डेली नियम से आसन करना चाहता है तो शन प्रक्षालन के 5 आसन गर्म पानी पी के, गर्म पानी मतलब ल्यूक वार्म वाटर पी के, वो उसे करने चाहिए। अगर फिर भी किसी को समस्या आती है तो प्लीज फिर स्पेसिफिकली फिर मुझसे कांटेक्ट करके पूछिए।
1: अब यहाँ पे रजनी जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: संदेश तो बहुत लंबा हो सकता है, मगर देखिए समाधान हर चीज का है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी जीवन में ऐसा लगता होगा, बहुत लोगों को लगता है कि समाधान नहीं है, हम फंस गए हैं। आप सिर्फ योग करना शुरू करिए, आपको रास्ते खुद ब खुद दिखते चले जाएंगे। आसन प्राणायाम के नियम लीजिए, यम नियम जो बताए हैं, जो आपके रिलीजन में जो भी बताया है उसको फॉलो करिए, जो भी आपके प्रेयर्स हैं उनको कोशिश करिए, जो भी आपने सीखा है अपने धर्म से या पेरेंट्स से मैं आप उनको फॉलो करने की कोशिश करिए और थोड़े थोड़े से नियम लीजिए और खुद से जुड़िए। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं जान सकते इस दुनिया में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने कहा कि योग का मतलब ही है जुड़ना, तो पहले सबसे पहले जो है हमें खुद से जुड़ना पड़ेगा।
0: जी आप, जीवन बहुत सरल है जीने के लिए मगर खुद को समझना बहुत ज़रूरी है।
1: हमें आशा है कि जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो सबसे पहले अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे, उसके बाद
0: एक कहावत भी है जी कि पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, तो ये खुद के गिरेबान में झांकने के लिए बहुत ताकत चाहिए।
1: ये बात तो है, और योग वो ताकत देता है,
0: वो योग वो ताकत देता है। आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी आप अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे आपको पता नहीं लगेगा,
1: वो समय अपने आप बता देगा,
0: समय अपने आप सारी चीजों को सॉल्व करता चला जाएगा।
1: तो डॉक्टर रजनी आहूजा, आप हमारे पास आई, आपने बहुत ही अच्छे से सभी लोगों को इतनी अच्छी बातें योग के बारे में बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
0: धन्यवाद रीमा जी।
1: बहनों, हमें आशा है कि योग के बारे में आपके जो ज्ञान है उसमें ज़रूर वृद्धि हुई होगी और आपने बहुत सी नई बातों को जाना होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम अंतराल लेते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा

श्रोताओं, अभी आप घर संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Binab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से

0: शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में

0: लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा

0: तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज डलडमरो मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड

0: शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम सदाबहार नख में
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक्शन रिप्ले से। गायक कलाकार हैं श्रेया घोषाल, गीतकार हैं इशात कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार कुमार के लिखे गीत को स्वर दिया है शान और अनुष्का मंच नदा ने। फिल्म का नाम है गोलमाल 3।

शेल और राकेश पंडित के स्वरों में अब सुनिए गुजारिश फिल्म का ये गीत बोल तुरास के, जिसे संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर स्वागत है। फिल्म ब्रेक के बाद से सुनिए अगला गीत, जिसे गाया है मोनिका डोगरा और विशाल ददलानी ने। बोल प्रसून जोशी के हैं और संगीत विशाल और शेखर के।

अगला गीत कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में बाबुल का लिखा गीत, संगीत दिया है एलियस ने और फिल्म का नाम है मूसा द मोस्ट वांटेड।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वर्धन सिंह और अदिति कौर की आवाज़ों में। रक्त चरित्र फिल्म का ये गीत बोल वायु के, जिसे संगीत दिया है धर्म संदीप ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम गीत लहरी अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम से। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एल्बम टाइम। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले सुनिए लकी अली।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है।

एक कमी है। यह इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि एक ही चुनौती के लिए कितने अलग अलग समूह या सभाएं होनी चाहिए। आदर्श रूप से आपको उसी चुनौती के लिए एक नया समुदाय तभी विकसित करना चाहिए जब ऐसे मौजूद समुदाय पहुंच से बाहर है। कई क्षेत्रीय समुदाय इस तरह से बनाए गए थे जो अभी भी आभासी उपकरणों के कारण सहयोग देखते हैं। इस प्रकार भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक सीखने का अनुभव और विकास सक्षम करते हैं। समुदाय बनाने का विचार बहुत ज्यादा काम जैसा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। यदि आप पहले से योजना बनाते हैं, अपना समय लगाते हैं, जो करते हैं उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं और कुछ बुनियादी चरण का पालन करते हैं, तो आप आसानी से अपना समुदाय शुरू कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पर काम करें। अपने समुदाय के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करें। आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपका समुदाय किस बारे में होगा, लेकिन सही लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको संक्षेप में परिभाषित करना चाहिए कि विषय मुख्य विषय क्या है और उन्हें एक साथ क्या लाएगा। लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि आपके समुदाय से क्या अपेक्षा करनी है। समान लक्ष्यों वाले सदस्यों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अधिक सहज महसूस करें और समुदाय के साथ जुड़े। इस तरह वे शामिल होने के लिए अधिक उत्सुक होंगे, जो समुदाय के बढ़ने और टिके रहने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पशु प्रेमियों या कला प्रेमियों के लिए एक समुदाय बना सकते हैं। यदि आप एक आउटडोर व्यक्ति हैं, तो आप गतिविधियों के लिए प्राकृतिक के प्रति उत्साह लोगों को एक साथ ला सकते हैं। शोक और मनोरंजन के अलावा आप व्यवसायों के बारे में कुछ बना सकते हैं ताकि लोग विशिष्ट विषय पर खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि गतिविधियां और विषय समुदाय की पहचान से मेल खाते हैं। उन मुख्य गतिविधियों की पहचान करें जिन्हें आप समुदाय के साथ आयोजित करना चाहते हैं। समुदाय नेटवर्किंग और आत्म सुधार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस मामले में गतिविधियों का आयोजन और आयोजन करना समुदाय प्रबंधन के सबसे बुनियादी हिस्से हैं। जब आप योजना बना रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे समुदाय के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त है। क्या यह एक बड़ा सम्मेलन है या एक छोटा मीटअप? क्या ये साप्ताहिक सभाएं हैं या मासिक कार्यक्रम? क्या आपको उन्हें ऑनलाइन होस्ट करना चाहिए या भौतिक कार्यक्रम आपकी भीड़ के लिए बेहतर है? आपके समुदाय की जरूरतों को जानें और उसके अनुसार कार्य करें ताकि आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और उन्हें समुदाय का सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी प्लेटफॉर्म चुनें जिसमें आपकी नियोजित गतिविधियों के लिए सभी उपकरण मौजूद है, ताकि आपको बाहरी सेवाओं की आवश्यकता न पड़े। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। जब समुदाय प्रबंधन की बात आती है, तो आपके द्वारा चुने गए प्लेटफॉर्म गेम चेंजर होता है। आपके पास सभी आवश्यक उपकरण होने से आपका समय बचेगा। आप हमेशा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और आपकी संगठन प्रक्रिया आसान हो जाएंगी। आपके समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से कुछ घोषणा उपकरण और संचार चैनल है। यदि आप सदस्यों के साथ स्थिर और सुचार संचार बनाए नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने समुदाय की अखंडता को बनाए नहीं रख सकते हैं। सारांश और सामुदायिक समाचार के लिए ईमेल, आपके सदस्यों के बीच आंतरिक व्यक्तिगत संचार के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तथा लोगों को बातचीत में शामिल करने के लिए आप जूम कॉल्स भी ले सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर फिजिकली मिलना आपके

लिए अगर इतना आसान नहीं होता है तो। अगर लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो वो किसी चीजों में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। अपने सदस्यों को हमेशा अपडेट रखें, उनसे बातचीत करें और उन्हें खबरों के बारे में बताएं। लोगों को एकत्रित करके परस्पर संवाद को प्रोत्साहित करें। एक सक्रिय समुदाय ही लोगों को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि पहले बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को लगे कि वे भीड़ का हिस्सा है, तो अपने समुदाय के लिए कार्यक्रम आयोजित करना आपकी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। जब लोग एक साथ महत्वपूर्ण समय बिताते हैं तो वो आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लोगों को एक साथ लाना एक सामुदायिक नेता के रूप में आपके मुख्य लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। अगर आपका सामुदायिक प्लेटफॉर्म आपको इवेंट शेड्यूल, RSVP, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईमेल अपडेट और रिमाइंडर, चित्र अपलोड और बहुत कुछ जैसे सही संगठनात्मक उपकरण प्रदान कर सकता है, तो भौतिक या वर्चुअल इवेंट आयोजित करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की तुलना देखें दोस्तों। जो भी हो, इफ यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, आराम से कीजिए। इस बारे में तनाव न ले कि ये कैसा होगा। समुदाय बनाना जरूरी नहीं है कि गंभीर और जटिल हो। ये नए लोगों से मिलने और अच्छा समय बिताने के लिए एक आकस्मिक मंच हो सकता है। आपको बहुत अधिक सोचने या योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय ले, प्रेरणा के लिए अन्य समुदायों को ब्राउज करें और प्रवाह के साथ चले। गो विद द ट्रेंड। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से थोड़ी देर में यानी शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे नंजम मरप्पदले के तहत पुरानी फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे व पीएम सुरक्षा बीमा योजना तथा विश्व संगीत दिवस पर चर्चाएं होंगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा होगी। संध्या 6 बजे सुनिए संगीत संगनी कार्यक्रम। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप भोजपुरी लोकगीत सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे देशगान कार्यक्रम। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं का समय रहेगा। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवानी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा होगी। रात्रि 8:35 पर रोजगार समाचार गौरवगान कार्यक्रम,

रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सिक्कल बहने का बांसुरी वादन होगा और वायला राजेंद्रन का वायलन आप सुनेंगे। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और अब कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति रस का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा उचित जल निकास। 6:10 पर जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जंगल शीर्षक पर। सवेरे 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 6:40 पर समाचार वार्ता और वतन के गीत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। सुबह 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर गायक होंगे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। सुबह 9 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम अली की गाई ठुमरी। सुबह 10 बजे गीत गाता चल कार्यक्रम। दिन के 11 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन के 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप श्रेया घोषाल के गाए कुछ गीत सुनेंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में गाना लहरी के तहत एक ही फिल्म के गाने सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर जिसमें कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा आओ हिलमिल गाएं। दोपहर 1:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा लाइव फोन और कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। दोपहर बाद 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे अनूप जलोटा। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे PM मुद्रा योजना पर चर्चा होगी तथा तुल्लु मिसी अरुवी के तहत फास्ट बीट के गाने सुनवाए जाएंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ अन्य कार्यक्रमों के अलावा आधुनिक गान प्रसारित होगा तथा श्री रतन गोलदार के साथ ली गई भेंटवार्ता का विषय रहेगा योगा एंड इट्स बेनिफिट। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम। 6:30 पर पॉप मसाला। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवानी के तहत गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम का समय रहेगा। तो अभी आप आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम में पहले सुनी उदित नारायण और साधना सरगम की मिली जुली आवाजों में हमेशा फिल्म का गाना बोल राहत इंदौरी के संगीत अन्नू मलिक का।

अब सुनिए दिल तेरा दीवाना फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे है और अब समय है तमिल कार्यक्रम का।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणकम तमिल रमदम वणकम नेयर्गले।

सरकार को बेईमान बना दिया। एमएलए को तोड़ता, एमपी को तोड़ता प्रधान, एमएलए को तोड़ता, एमपी को तोड़ता बंदरमुहा को प्रधान बना दिया। सत को तोड़ता, सती को तोड़ता विद्वान को।

पैसा नैना सहानी के पास था, वो जहाज खरीदने वाली थी, कौन जानता था कि वो तंदूर में जलने वाली थी। पाप हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, पैसा हसन मेहता को बर्बाद कर दिया। क्या कमी थी पैसे की संजय।

रोटी से पेट तो भर गया, पैसा से पेट नहीं भरा। सहारा के पास एक स्कूटर था, उसका भी पेट नहीं भरा। हसद मेहता एक साइकिल लेके आया था, उसका भी पेट नहीं भरा। बिरला एक थाली लेकर आया था, उसका भी पेट नहीं भरा। टाटा एक लोटा लेकर आया था, उसका भी पेट नहीं भरा। चंद्रशेखर सिंह एक झोला लेके आए थे, उनका भी पेट नहीं भरा। चंद्रशेखर सिंह एक झोला लेके आए थे, उनका भी पेट नहीं भरा। बलेश्वर एक डफली लेके आया था, इनका भी पेट नहीं भरा। बिना पैसे वाले चैन से सोते हैं, चैन से खाते हैं, पैसे वाले पैसे के लिए

श्रोताओं, धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थे बालेश्वर। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए देशगान के तहत कुछ देशभक्ति गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, आज संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा उचित जल निकास। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जंगल शीर्षक पर।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
5: नमस्कार, भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
4: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
6: तीन महीने में पैसे डबल,
7: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
6: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
8: और कल होगा भी नहीं।
6: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
9: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
6: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे,
8: और फास्ट रिटर्न से बच के
6: और फास्ट बॉलिंग से भी।
10: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रीय वायुश्री और ADIP योजना के तहत द्वीप समूह में कल से निःशुल्क मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा और पर्यटन विभाग की ओर से प्रदर्शनी मैदान में 26 जून से 2 दिवसीय मानसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

सांझे समाचारों के साथ मैं टीजय श्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। द्वीप समूह में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग क्षेत्रों, संस्कृतियों और समुदाय के लोगों को आपस में जोड़ने वाली एक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने सभी से शारीरिक कल्याण, मानसिक शांति और समग्र विकास हासिल करने के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में द्वीपों के उपराज्यपाल, सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। योग सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में योग प्रेमियों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता ने भाग लिया। इस बीच कृषि निदेशालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया, विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास किए, जो शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में योग के महत्व को रेखांकित करता है। इस अवसर पर कृषि निदेशक ने योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर भी आज योग अभ्यास किया गया। उधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्ली ग्राउंड में जिला स्वास्थ्य समिति तथा राज्य आयुष सोसाइटी के सहयोग से पीएम श्री GSS स्वदेश नगर में स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के साथ 12वां अंतर

राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रमुख शिभानी मजुमदार मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर वृक्षासन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा क्षय रोग के प्रति जागरूकता व्याख्यान भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएँ शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, मूल्यांकन शिविर और मानसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय वायुश्री और ADIP योजना के तहत द्वीप समूह में कल से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए निःशुल्क मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ADIP योजना के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 40% या उससे अधिक विकलांगता का वैध UDID कार्ड होना और उनकी मासिक आय 22,500 रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत आने वाले आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। वृक्षाबाद में कल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा फ्रारगंज में 23, बार्टन में 25, रंगत में 26, मायाबंदर जिला अस्पताल में 27 और 28 जून को डिगलीपुर के चिकित्सा केंद्रों पर शिविर लगेगा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 49वां स्थापना दिवस 23 जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा और मत्स्य पालन सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि और नाबार्ड के महाप्रबंधक के विजय पांडियन सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। 23 जून 1978 से क्यारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा मिनिकॉय के लिए एक प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। संस्थान ने 3 कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से पिछले 48 वर्षों में कृषि विकास, प्रौद्योगिकी प्रसार, सतत आजीविका और द्वीप कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यटन विभाग सभी संबंध विभागों के सहयोग से 26 से 28 जून तक प्रदर्शनी मैदान में मानसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। इसके साथ ही कार्वाइंस कोव समुद्र तट में बीच स्पोर्ट्स भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक होटल व्यवसायी, रेस्तरां मालिक, खाद्य विक्रेता, स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत प्रतिभागी थीम आधारित वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए जगह आरक्षित कर सकते हैं। इस उत्सव का उद्देश्य द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय उद्यमियों के लिए स्थायी आजीविका एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति 24 जून तक पर्यटन विभाग के ईमेल के माध्यम से अपना विवरण साझा कर सकते हैं। स्टॉल के लिए आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र 23 जून दिन में 11 बजे तक जमा किया जा सकता है।

24 जून को समिति द्वारा स्टॉल का आवंटन और आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। आबकारी कानूनों को लागू करने और अवैध शराब रखने पर रोक लगाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत रंगत थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद समीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कल छापामारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 37 वर्षीय विजेंद्र कुमार यादव के कब्जे से 66 शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने जब्त की गई शराब को कब्जे में ले लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। आरंभिक जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी रंगत थाना में आबकारी से जुड़े एक मामले में शामिल रह चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रीय वायुश्री और ADIP योजना के तहत द्वीप समूह में कल से निशुल्क मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा और पर्यटन विभाग की ओर से प्रदर्शनी मैदान में 26 जून से 2 दिवसीय मानसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी हर्बे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 22 जून को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 23 जून को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी सेंटिनल 23 तारीख को लिटिल अंडमान की यात्रा पर सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और उसी दिन रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकुबार के लिए 28 जून को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान 29 जून को शाम 4 बजे कानिकुबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी सेंटिनल 25 तारीख को सुबह 7 बजे कैंबल बे के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा 28 तारीख को रात्रि 8:30 पर कैंबल बे से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। जाते और आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान का निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और नानकौरी में भी रुकेगा। एमवी कालीघाट मायाबंद मंगलवार 23 तारीख को सुबह 9 बजे नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा व बृहस्पतिवार 25 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल 22 जून को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप जाने के लिए कल 22 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजदीप जाने के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजदीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रानी लक्ष्मी रंगत जाने के लिए कल सोमवार 22 जून को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा।

तथा मंगलवार 23 जून को सुबह 7 बजे रंगत से वापस श्रीविजयपुरम लौटेगा। जाते और आते समय ये जलियान शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप जाने के लिए कल दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप जाने के लिए कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा और परसों 23 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तकदीर फिल्म के गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित और साथियों के, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:30 होने वाले हैं, अब लीजिए सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 21 जून है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक जीवन पद्धति है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को योग के महत्व और उसके लाभों के प्रति जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा आज के कार्यक्रम का। दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 232-540 और 232-558। हमारा STD कोड है 031-92। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से।

0: दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 232-540 और 232-558। हमारा STD कोड है 031192। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक नंबर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: नटराज नंदन जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और आपकी बात
1: हो रही है राकेश जी से, और मैं बात कर रहा हूँ इस समय शिमला से।
0: अच्छा, आप शिमला से हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम से जुड़ के।
0: जी जी जी, तो शिमला का मौसम कैसा है?
1: शिमला का मौसम साफ है, और इधर अंडमान निकोबार का कैसा मौसम है?
0: यहाँ भी आज तो धूप पड़ी है, अब हल्की हल्की ठंड हो रही है, हालांकि रात हो गई है ना।
1: जी जी जी जी
0: जी जी जी। तो वैसे आप जानते ही होंगे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में योग का क्या महत्व है?
1: जी जी, योग का महत्व ये है कि अगर अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, अगर आपको लंबी आयु चाहिए तो योग करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम योग करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, क्योंकि अब क्या होता है, कई बार हमें हर बीमारी का सामना करना पड़ता है, कभी डायबिटीज की, कभी कैंसर की समस्या, कभी हार्ट की समस्या, और हम दवाई तो इतनी खाते हैं जितनी कि हम खाना नहीं खाते। दवाई हमारे पास जब देखो पूरा पैकेट दवाई का पड़ा रहता है, पूरी डब्बी जो है दवाई की पड़ती है, तो इससे हम तंग आते दवाई खाने से। इसलिए क्या होता है, हमें योग करना चाहिए, और योग अगर हम करेंगे, और ऐसा नहीं कि हम 21 जून को योग करें, लेकिन साल में 365 दिन में योग करना चाहिए। और मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ उससे, जैसे हमारे जो दृष्टि बाधित लोग है, जैसे कि शायद आपके क्षेत्र में भी दृष्टिहीन होंगे, और मैं खुद भी दृष्टिहीन हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आकाशवाणी विजयपुरम के माध्यम से, जो बेचारे दृष्टिहीन योग तक नहीं पहुंच पाते, तो इनके लिए ऐसे शिविरों का आयोजन करना चाहिए,
0: ताकि
1: क्या बोलते वो भी जुड़ जाए, और बुजुर्गों के लिए भी जो है शिविरों का आयोजन करना चाहिए, ताकि उनको जो है घर घर बैठे जो है योग करना
0: सिखाने
1: अगर आ जाते हैं तो वो भी योग से जुड़ जा सकते हैं।
0: जी राकेश जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमें और हमारे श्रोताओं को। उम्मीद करते हैं कि आपके शब्दों से उन्हें ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। तो आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा इस शाम, और अब वक्त हो चला है आपसे ये पूछने का कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हम मुझे एक गाना सुना है, सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल योगा डे की भी, और अंतर्राष्ट्रीय जो है फादर डे मनाया जा रहा है, तो उसकी भी हाथ से शुभकामना है। उस उपलक्ष पर मैं एक गाना याद आ रहा है कि एक बाप कहता है अपने बेटे से कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तू मेरा नाम करेगा रोशन, क्योंकि हमारे बच्चे जो है अपने माँ बाप का नाम अगर रोशन करे तो
0: इससे बड़ी अच्छा खुशी उनके लिए कोई नहीं हो सकती। जी
1: कोई
0: बिल्कुल
1: नहीं होती है।
0: जी, जी,
1: जी, जी जी जी जी। तो ये गाना सुनना चाहता हूँ सभी फादर फादर के लिए है, और कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ। तो भगवान सिंह परमार हैं, और पूर्ण वर्मा हैं, अविनाश तेली हैं, शिवा लोहत हैं, और अमल भस्माचार्य हैं, और पूर्णिमा जी हैं, और सत्यनी विष्णु कुंडू, और मोनिका जी, और धर्म जी है, और विमल भस्माचार्य, और रमेश प्रजापति है, और सभी के लिए, सभी के साथ ये गाना सुना चाहता हूँ।
0: जी ठीक है राकेश जी, तो आइए हम आपका ये मनपसंद गीत भिजवा रहे हैं शिमला, सुनिए।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो म्यूजिक लव।
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मेरी किनसे बात हो रही है इस समय
1: नमस्कार मैडम,
0: जी?
1: मैं बोल रहा हूँ आसाम त्रिभुवन डिस्ट्रिक्ट से। मैं
0: जी, कैसे हैं आप
1: तो बहुत अच्छा हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: जी? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप योग करते हैं?
1: कट्टा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, अरे वाह। तो आप कौन कौन से योगासन कर लेते हैं आमतौर पर?
1: आज तो जो दिवस मनाया जा रहा है
0: जी
1: तो में है ना,
0: जी
1: और युग हमारा एक रखने के लिए युग करना हमारा नियम है।
0: जी
1: हमारा सभी ठीक ठाक रहेंगे और युग हमारा बहुत अच्छा है। यो है और भी करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए युग हमारा प्रयास है। और युग हमारा हमारा भारतवर्ष में सब विश्व में शुरू हुआ
0: जी
1: 2000 में है ना,
0: जी जी
1: जो युग दिवस भारतम
0: मना रहे हैं जी।
1: सिंगल यार्ड हो गया हमारा राष्ट्रसंघ
0: जी जी
1: में
0: जी
1: राष्ट्रसंघ
0: जी
1: सालों में कुछ जूनों तारीख बनाया, आज धूमधाम से बनाया है।
0: जी
1: लेकिन आज नहीं किया, 5 दिनों को पालन हमारा
0: जी जी जी
1: सब ठीक रखने के।
0: जी जी जी तो अब आपसे जानते हैं क्या?

0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तो मैं बता सकता हूँ, फिल्म का नाम है आंदोलन
0: जी, और गीत के बोल?
1: कितने दिनों की बात मिल।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।
1: मैं फोन चढ़ा हुआ अभी आकाशवाणी का विजयपुरम जो सुता कार्यक्रम सुनता है सबसे लेकर
0: जी जी जी
1: और ओके मैम
0: जी जी। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।

0: म्यूजिक लवर्स।
1: जय माता दी।
0: जी नमस्कार, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी, पूरन वर्मा जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ। मैडम आप सुनाओ।
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो आपका दिन कैसा बीत रहा है?
1: जी मैडम अच्छा
0: जी
1: आपका।
0: जी जी मेरा भी अच्छा। वैसे आप कहीं घूमने गए, कुछ नया किया आपने?
1: जी मैडम हम तो घर पे रहते हैं और
0: अच्छा।
1: मैं दिव्यांग हुआ से तो आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: जी, चलिए बहुत अच्छा लगा। जी जी जी जी तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप योग करते हैं? जैसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं।
1: जी मैडम
0: जी
1: योग तो नहीं करते पर क्या है कि हम तो खेती बाड़ी करने वाले होते हैं ना
0: हाँ जी
1: तो हम पूरे दिन भर काम काम पे लगा
0: जी
1: रहता है तो हमें योग की वो जरूरत नहीं। हमारा काम खेतों का होता है मैडम।
0: जी, पर योग सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं देता, वो मन को भी शांत करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे, जब कभी भी आपको समय मिले।
1: जी मैडम जी
0: जी, तो वैसे इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम आज ये दो विषय है तो इसकी भी आपको और तमाम सुनने वाले लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं उसको शुभकामना देना
0: जी
1: चाहूंगा
0: जी
1: मैं। और
0: रखिए।
1: फिल्म
0: जी
1: फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी और उसमें गाने के बोले तुम ही हो माता पिता तुम ही हो
0: जी
1: और आपका इजाजत हो तो मैं मित्रों को याद करूंगा।
0: बिल्कुल
1: मैडम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी मैडम सबसे पहले आप है
0: जी
1: और मेरा दोस्त है राकेश है भगवान सिंह जी है अभिनाथ जी है रमेश प्रजापति जी है गोल्डी बाई है पूर्णिमा मैडम है और अमल है बिमल है और अमर साहु है लाइव कॉलर शिवा लोहार के साथ तमाम श्रोता।
0: जी तो ठीक है पूरण वर्मा जी, आइए आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: नमस्कार मैम राधे राधे
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी। मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही
0: जी
1: हूँ।
0: संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं आती हूँ मैम, आप कैसे
0: जी
1: हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: जी फिल्म का नाम है कालिया
0: जी
1: और गाने का बोल है जब से तुमको देखा,
0: जी तो आइए आपको सुनवा।
1: और
0: जी
1: दोस्तों को याद करती हूँ
0: बिल्कुल
1: मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी पहले आप सुनेंगे,
0: जी
1: और आसाम से तैमुजीत जी, दिल्ली से धर्मवीर जी, शिमला
0: जी
1: से राकेश जी, पूरन वर्मा जी और भगवान जी, सब
0: जी
1: सबको लेके सुनाऊंगा।
0: जी तो ठीक है संगीता जी, आइए आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गीत।
2: हे क्या एल ओ वी ई एल ओ वी ई मतलब क्या? प्यार।

अगले रविवार भी हमसे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 55 8। हमारा STD कोड है 03192। तो दोस्तों, अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी को इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड that ease of doing business is one of the major priorities of the government, and the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you.
2: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले बार

0: वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में. सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है. सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है. तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था. तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए. अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे. मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी. तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं खास करके, जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं. अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%. सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं. हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था. तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलियंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
0: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance heavy system to a facilitation driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
0: Yes.
2: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is. A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So

0: Like the removal of compliances and simplification of the compliances is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
0: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Mm.
0: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
0: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
0: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India.
1: Hmm.
0: Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business. So this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: That 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: system.
0: Absolutely.
1: So, Mr. Chinoy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सूरज जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी, जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोअर्स लेवल से लेके

0: हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
1: जी
0: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था।
1: जी,
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ।
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चली नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन। ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसके खास बात के रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे, वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। तो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हरेक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे।

0: था और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्होंने क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
1: yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड
2: इंसेंटिव, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड, ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा GDP का साइज ऑफ GDP दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स

0: been enabled to become a part of nation building?
1: I think absolutely. If there are any listeners who want to start a business, women or men, there are a lot of specific projects. And, you know, if you look at the year before last budget, right, one of the things was 75% women in economic activity. Mm-hmm. You know, that's his goal of what does Viksit Bharat mean, right?
0: Yes.
1: And we want to become entrepreneurial. So this is the best time for any young person or even a person who
0: of
1: is
0: any age
1: group,
0: yes,
1: to actually explore setting up a business. The domestic ecosystem to promote entrepreneurship has never been better. Some people may say some more changes are going to have required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, it is looked at, it may be accepted, but the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
0: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
2: Yes, Sonuji, I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the business's trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं.
0: Yes.
2: हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
0: तो ये एक ब्रेक थ्रू मेजरली टू
2: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन द नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
0: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनॉय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
2: थैंक यू.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग. इस समय रात्रि के 8:35 हुए हैं. श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए गौरवगान कार्यक्रम के तहत कुछ देशभक्ति गीत.

श्रोताओं, गौरव गान कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक

0: शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए

0: व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की

0: राशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Other scriptures are available like Bhagavad Gita and Hatha Yoga textbooks, Hiranya Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Sib Samhita, like that. We have a tradition of yoga from ancient time to modern time.
1: Mr. Rahul, you just mentioned about how feature of yoga is from the ancestral India. In fact, Prime Minister Narendra Modi also today spoke about what Bhagwan Krishna had to say about this. So let's first hear what the Prime Minister said.
2: गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीपिंग पैटर्न, बैलेंस एंड डिसिप्लिन, ही सेड इज एट द हार्ट ऑफ योगा एंड एट आर लाइव्स टू। मिस्टर राहुल, वी लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट रोल डज बैलेंस डाइट, स्लीपिंग पैटर्न अलॉन्ग विद योगा प्ले टूवर्ड्स आवर वेल बींग?
0: अबाउट योगा, योगा इज नॉट ओनली फिजिकल पॉस्चर्स, yoga is a lifestyle, yoga is a art of living. Food and sleeping pattern is most important part of our life. When we will sleep well, our day will be well. When we wake up well, and we can practice other aspect of yoga like asana, pranayama very well. And when we talk about food or the diet, it plays important role in yoga. When we will eat balanced diet, it will give health benefits as well as it will enhance vitality of our body. And when we start practicing some Hatha Yoga practices, we start with Satkarma practice. Those are cleansing practices. So when we will eat balanced diet, it will automatically cleanse our body and it will prepare our body for higher practices. So food and sleep plays very vital role in the practice of yoga.
1: How can yoga help us to maintain mental and emotional well-being in such an environment?
0: In today's fast-paced world, many people are dealing with stress, anxiety, poor sleep and information overloaded due to many digital engagements. Yoga offers a holistic solution through practice such as asana, pranayama, and most importantly, there are many relaxation techniques and meditation techniques. They helps to calm down the nervous system, improves the concentration and enhance emotional resilience. Even 20 to 30 minutes of daily yoga can help people feel more balanced, more mindful and better life, and even they can handle the challenges in modern life.
1: This year's International Yoga Day theme is also very interesting. The theme is Yoga for Healthy Aging. Before we ask you for your comments on this, we'll first hear what the Prime Minister had to say on this.
2: भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट we can work to ensure that age does not reduce human potential.

0: रहमान मियां, रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान।

0: वकील करोगे बेटा?
1: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
0: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
1: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
0: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
0: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
0: फिर इस गाय ही को?
3: बहू
1: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
0: तो फिर करोगे क्या?
1: कुछ तो करना ही होगा।
0: यहाँ

0: इतना इसके नीचे भैया, इतना दूध इस गाय के नीचे।
1: अरे हाँ हाँ, हम समझ गए, तुम गेहूं बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
2: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
3: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खड़ा क्या सोचा, ला
2: रस्सी गौ को छीन लेते हो भाई,
3: पैसे दे रहे
1: हैं। अरे मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है, मैं तुम चुप रहो, मुझे
4: दे रहा है। अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
1: आइए आइए मुख्तार साहब। सलाम
3: सलाम
4: सलाम।
1: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
3: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
4: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
3: हुजूर ये देखिए,
1: गर्दन भारी पुट्ठे
2: और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
4: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
3: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
4: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
2: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
4: दूध देती है?
2: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले।
3: बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
4: क्या दाम मांगते हो?
3: 50 रुपए हुजूर।
4: हमें तो 35 का माल जचता है।
2: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
4: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
3: क्या कहे हुजूर,
2: चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुँचा देता
4: हूँ।
2: चलिए
4: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं ली?
3: हुजूर आप हिंदू हैं,
2: इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गौ को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
4: तुम्हें रुपये की कोई खास जरूरत नहीं थी?
2: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
4: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
2: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
4: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
2: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
4: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
2: हुजूर एक अर्ज और है।
4: क्या?
2: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं।
4: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
2: जी सरकार।
4: बस

0: यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
1: जी सर,
0: आ जाओ।
1: जी पापा,
0: ये कोठरी इस सामने वाली गऊ का घर है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
1: जी पापा,
0: बस यही बांधो खूंटे से है, और देखो इस खूंटे से बच रहे हो।
1: जी पापा जी, बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
0: ये लो रुपए, गिन लो।
1: जी, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा, अब चलो। सलाम हुजूर।
0: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
2: आई। हाँ कहो।
0: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
2: क्या?
0: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
2: सच?
0: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
2: वो कैसे?
0: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
2: ओ,
0: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रही थी, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
2: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
0: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
2: गौ गाय घर में बंधी है ना।
0: आओ
2: चलो,
0: चलो दिखाते हैं।
2: चलो,
0: अरे आओ,
2: चलो चल कर देखे।
0: मसला भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
2: अच्छा, चलो।
1: सलाम हुजूर।
0: सलाम। तुम ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
1: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
0: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
1: बजा फरमाया हुजूर।
0: कैसे आना हुआ?
1: हुजूर, बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी है, हज करना चाहती हैं हुजूर। पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
0: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो।
1: जी हुजूर।
0: मैं वादे पर रुपए लेता हूँ, अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
1: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
0: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
1: सरकार, 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
0: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
1: ठीक है सरकार, ठीक है।
0: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
1: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
0: दस्तखत कर सकते हो?
1: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
0: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
1: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
0: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 है।
1: 180?
0: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
1: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
1: छोड़ मुझे।
3: चल
1: चल,
3: क्या बड़ा आया। अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है। चल
1: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
3: अरे अच्छा अच्छा चल।
4: सरकार, रहमान को ले आया हूँ।
1: सलाम हुजूर।
0: क्या सलाम हुजूर, 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो, क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
1: हुजूर
0: लाओ, रुपए कहाँ है?
1: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
1: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर, तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर, जब तक जीती

0: दूसरों कुछ सेवा कर दूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
1: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
0: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं।
1: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से ओझ कर रहे हो कि
0: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
1: एक साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
0: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
1: ठीक, अब तुम जा सकते हो
0: हुजूर। भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
1: सलाम।

0: क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त तो नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं माँ, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी समझ जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम लोगों ने मेरी
1: अम्मा

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, ये सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब की सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो?
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं पर हिम्मत नहीं पड़ती। हुजूर
1: कहो क्या बात है।
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हैं
0: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं

0: मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है,
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम
0: सलाम।
1: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
1: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
1: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
1: हाँ बोलो।
2: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
1: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
1: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब के साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
2: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
1: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
2: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
1: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
2: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती,
1: और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
2: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
1: नहीं तो
2: फैसला।

0: Rahman, le e dudëm të bilegane, laka, kaza.
1: Va, va, Rahman, ab këtë ri u bëri gëni uti e bëjja.
0: Bes kisan ki nëhnët ka phal të fësali e bëjja.
1: Ije të sëche, kaka, mehnët me Rahman ki taraf se kasar nëhi hui.
0: Tëb dhek hi lo, kësi jordar uk hai, ye lo. तुम भी दो चार दम लगा लो भैया
1: लाओ भैया लाओ
0: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है
1: ऊख तो भारी है बहुत गुड़ निकलेगा भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा
0: पर मंडी में नया गुड़ पहुंचते ही भाव गिर जाते हैं ये मुश्किल है
1: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए
0: तुम ठीक कहते हो भैया ठीक कहते हो
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान
0: अगहन है अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी
2: चिलन ताजा करने के काम भी किया है
0: तुम ठीक कहते हो काका
2: क्या कर रहा है रहमान आपको मत छोड़
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया अरे कम वक्त ऊख के बीचों बीच गिरा है अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास
3: खेत में लग गई अरे इसे मुझे

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। जा मेरे अल्लाह, कहाँ चुप जाओ, कहाँ चुप जाओ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: कर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा हूँ।
1: चलता है या मैं? चल चल चल
0: हुजूर, मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है।

0: उसे मुक्तिदान कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्तिदान अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
1: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत।

धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे राग मारू बिहाग। इसे प्रस्तुत कर रही हैं रहना चक्रवर्ती।
1: नमस्कार, मैं रहना चक्रवर्ती। ये शाम का राग है, राग मारू बिहाग। आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुनने जा रहे हैं सिक्कल बहने का बांसुरी वादन और वायला राजेंद्रन का वायलन वादन। तो आइए पहले सुनते हैं सिक्कल बहने का बांसुरी वादन। इनके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं वायलन पर ए कन्याकुमारी, मृदंगम पर श्री मुशनाम वी राजा राव और घटम पर ई एम सुब्रमण्यम। तो आइए पहले सुनते हैं राग सौराष्ट्रम, जो आदि ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना राग सौराष्ट्रम जो आदि ताल में निबद्ध था, अब सुनिए राग भैरवी जो आदि ताल में ही निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सिक्कल बहने का बांसुरी वादन। अब सुनिए वायला राजेंद्रन का वायलन वादन। इनके साथ मृदंगम पर संगत किया है श्री रागम एस मधुसूदनम ने। तो सुनिए वायला राजेंद्रन का वायलन पर बजाया राग नट्टा, जो आदि ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिक्कल बहने का बांसुरी वादन और वायला राजेंद्रन का वायलन वादन। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। और अब मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:13 हुए हैं। अब आज की हमारी दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:28:30 हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: चेतना वो आंतरिक प्रकाश है जो हमें सही और गलत का बोध कराता है। ये केवल जागरूक रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की कला है। जब मनुष्य अपनी चेतना को जागृत रखता है तो वह हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि जागृत चेतना से भी प्राप्त होती है। चेतन मन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और अपनी क्षमताओं को पहचानने की प्रेरणा देता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराता है।